ये तो सच है सुनने वालों कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और मैं क्यों ये कहती हूँ, क्योंकि दुर्गा माँ जो है वो बड़ा दयावान है। एक गीत हम पेश करते हैं उन सभी के वास्ते जो बीमार है या लाचार है, और ख़ास करके भी ये गीत को हम पेश करते हैं सोनी सांतू जी के वास्ते जो बीमार है और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। तो चलिए मिलकर ये गीत सुनते हैं।

या लाचार है, और ख़ास करके सोनी सांतू जी के वास्ते जो बीमार है और आहिस्ता आहिस्ता भी ठीक हो रहे हैं। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ।

फ्रॉम द मूवी खानदान से हमने पेश किए हैं कल चमन था आज एक सेहरा हुआ देखते ही देखते ये क्या हुआ। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं।

द माइती मुकेश और लता जी मिलकर सुना रहे थे मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं। छलिया है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आके ये पूछे।

फिल्म छलिया से भी आप सुन रहे थे मेरे टूटे हुए दिल से। कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करने वाले हैं सुनने वालों। और गीत का बोल है, छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बस मेरा सलाम।

चलिया मेरा नाम चलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने जा रहे हैं, वो भी देवी कारला छांगूर जी के वास्ते, जो सूरीनाम देश के रहने वाली है और उन्हें ये गीत बेहद पसंद है और मेरे प्रोग्राम उनको भी बेहद पसंद है। और ज़रा से मैं बतला दूँ कि ये कारला छांगूर कौन है। ये कारला छांगूर जी अशना छांगूर जी की माँ है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

होता है होता है सुनने वालों, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। और ये गीत हमने पेश किए है देवी करला छांगूर जी के वास्ते, जो सुरीनाम देश के रहने वाली है और जिन्हें ये गीत बेहद पसंद है और मेरे प्रोग्राम भी। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। लता जी आपको सुनाने वाले हैं और ये गीत हम पेश करते हैं स्वर्गीय रोशनी राधा किशुन जी के नाम पर, उनकी याद में, क्योंकि उन्हें ये गीत बेहद पसंद थी।

तेरा जलवा जिसने रेखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। और ये गीत हमने पेश किया है स्वर्गीय रोशनी राधा किशन जी की याद में। अय्या सुकु सुकु

मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार। अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

0: जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है, कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू

बेबसी सहमी सहमी हर घड़ी बिन चाहत क्या जिंदगी जीता मैं किस लिए अय्या करूँ मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु।

या सुकु सुकु अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर मैदली हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। बताएंगे नहीं कि कौन सा मैदली है, चलिए मिलकर सुनते हैं।

जो हम इस गीत में ढूंढते थे सुनने वालों, वो तो नहीं मिला, लेकिन जब मिलेगा तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। ए गुलबदन मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी प्रोफेसर।

गुलबदन ऐ गुलबदन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, सुनने वालों प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और एक बहुत से सुंदर गीत हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

तेजाब है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हमने पेश किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नमक हलाल है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जवानी जानी मन।

आशा भोसले जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी नमक हलाल। कसम पैदा करने वाली है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं झूम झूम झूम बाबा।

अभी आप सुन रहे थे झूम झूम झूम बाबा, और झूम झूम झूम बाबा के बाद हम पेश करते हैं क्या, आप खुद सुन लीजिएगा।

The title from the movie Disco Dancer से हमने पेश किया है, सुनने वालों, कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं। जरा सा हम देखे, जुम्मा चुम्मा दे दे, आज तो जुम्मे का दिन नहीं है, लेकिन अगर आप चुम्मा देना चाहते हैं तो ज़रूर दे दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े।

जुम्मा चुम्मा दे दे, और जुम्मा चुम्मा दे दे के बाद हम पेश करते हैं दे दे। क्या दे दे बताऊं? नहीं बताऊंगी।

बैंड वाले भाई साहब, एक मिनट, क्या है कि हमारी मीना यहाँ कहीं ऊपर रहती है, हमें उसका पता मालूम नहीं, आप थोड़ा बाजा बजाएंगे, हैं पैसे बाद में, 1 2 3 4।

दे दे प्यार दे अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। शान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से द टाइटल आप सुनेंगे।

जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से और मरते हैं भी शान से, ये तो सच है सुनने वालों। इसी फिल्म से एक और गीत हो जाए।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a nice weekend and take care of yourself. Till next time.

मर के भी हज़ारों को याद आएंगे, मर के भी हज़ारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। मुझसे पहले आप सभी ने सुने हैं शांता, शांता मुझसे पहले प्रोग्राम में थी और उसके बाद मैं यहाँ पर उपस्थित हो चली हूँ, तो मैं शांता को हार्दिक से धन्यवाद कहती हूँ।

अभी आप सुन रहे थे ओपनिंग सिलेक्शन मेरे हिस्से के प्रोग्राम में, और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं मुकेश जी की आवाज़ में। ये सुंदर भजन आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश जी की आवाज़ में प्रभु का नाम जपो मन मेरे। लता और मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी एक बेचारा से आप सुनेंगे हो नैना तेरे नैना।

लता और मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। फिल्म का नाम है एक बेचारा, इसी फिल्म से हमने आप सभी को सुनाए हैं। तू मुझको और मैं तुझको समझाऊं क्या, तू मुझको और मैं तुझको समझाऊं क्या, दिल दीवाना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, नैन का चैन चुरा कर ले गई।

नैन का चैन चुरा कर ले गई। अभी आप सुन रहे थे मुकेश जी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है चंद्रमुखी। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है, यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है, यही होता है तो आखिर ये यही होता क्यों है।

दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी एक हसीना दो दीवाने। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कहीं और चल। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रे आने वाले आ, बस तू देर ना लगा।

रे आने वाले आ, तू देर ना लगा, हर आहत पे हो ढक से दीवाना दिल मेरा। लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कहीं और चलो। जिस तरह आग को आग कह देने से मुंह नहीं जलता, बिल्कुल उसी तरह अच्छे को बुरा कह देने से बुरा नहीं हो जाता, लिहाजा अच्छा गुमान रखें।

सोच रही कि कहूँ ना कहूँ, पर आज कहूँगी। मेरे सनम तूने ले तो लिया दिल, याद रहे मेरा जीना है मुश्किल तेरे बिना। अभी आप सुन रहे थे, जरा सी जिंदगी है अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है।

कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता। सबक जिंदगी ने सिखाया है मुझे, हर अपने ने रुलाया है मुझे, कोई अपना अपना नहीं होता, ये भी एक अपने ने ही सिखाया है मुझे।

तेरी आँखों में देखूँ तो तेरी तौहीन ना हो जाए, तेरी आँखों में देखूँ तो तेरी तौहीन ना हो जाए, तुझे मेरी मोहब्बत पर यकीन ना हो जाए।

प्यार के उजाले में गम का अंधेरा क्यों है, जिसको हम चाहे वही रुलाता क्यों है। मेरे रब्बा अगर वो मेरा नसीब नहीं तो ऐसे लोगों से हमें मिलाता क्यों है।

जिंदगी सुंदर है पर जीना नहीं आता, हर चीज़ में नशा है पर पीना नहीं आता, सब मेरे बगैर जी सकते हैं, बस मुझे ही किसी के बिना जीना नहीं आता।

0: Radio.
1: नूपा इम्पेक्स फ्रूट क्लाइन हैंडल डिंकल नंबर 56 देन हाथ में सभी त्रोपी सामान रोजाना आपको यहाँ पर ताजा दी जा रहे हैं। भाता भिंडी तरोई अमसोई सोप्रोपो तैरबला काउस बंद अनेक तरह की ड्रिंक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। फर्नांडिस के साथ में मसाला ब्लिक्स वारन कासरीपो चावल और दाल अवल और बेहतर पता है जहाँ पर रोजाना तमाम ताजा सामान आपको मिलते हैं निहायत सस्ते भाव पर। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए तार का नंबर आप नोट कीजिए 9 7 3 7 7 7 7 2 6 पर आप बातचीत करें। नूपा इम्पैक्स रोटर क्लाइन हैंडल डिंकल नंबर 56 देन हाग में।
2: Nupa Impex, Surinaamse markt in Den Haag. U kunt bij ons terecht voor Fayapatu producten, Soto Mix, kant-en-klare chutney, bonensoorten, ketchup marinades, nasi kruiden, pomtaier en nog veel meer. Kijk op onze website surinaamsetoko.nl. Surinaamse markt in Den Haag.
3: रमीज ट्रेवल सर्विस फॉर ऑल योर बुकिंग्स। सालों से सर्विस और गारंटी के साथ आपकी सेवा करते हैं। हर एक बुकिंग के लिए रमीज ट्रेवल सर्विस लिट इयाता टिकट क्लार टर्वाइल यू वक्त। ऑनलाइन बुकिंग के लिए www.ramiztravel.nl। इंडिया टूर्स के लिए भी हमारे पास आइए। रमीज मनी ट्रांसफर 10 मिनट के अंदर आपके पैसे दुनिया में कहीं पर भी आपके परिवार तक पहुँचा देते हैं। De Heemstraat 166, Hobbemaplein, Den Haag ke Bazaar ke nazdeek mein. Ramesh Travel, Ramesh Shipping and Ramesh Money Transfer. Isi daftar mein laaye gaye hain. Post NL ke kantoor. Voor overschrijving van uw autokentekens kunt u hier terecht. Ramesh Shipping voor al uw pakketten. Aapke pakket aapke ghar par aakar le lete hain. Pakketten voor district Komabaina, Saramaka, Koruni en Nikeri worden via Surpost lokaal uitgereikt.
4: Let op.
3: Een boedel verhuizingen, auto's, zwaar materieel, je hiense bhejwaaie. Pakketten worden in containers verscheept, dus inbraak en diefstal is uitgesloten. De Suriname specialist. Ook pakketten naar Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba. Ramesh Travel, de beste service. De Heemstraat 66, telefoon voor afspraken en informatie. 070-389-6047. Jato 070-380-4284. Check ook op onze website ramishtravel.nl.
0: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 20 तक 7 8। फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

0: Ahong Hindustani Radio.
1: एक बात बोलूं, मैं जिससे बात करता हूं उसे उदास कर देता हूं, कभी कभी तो अपनों को निराश कर देता हूं, बहुत चोट खाई है दिल पर तभी खामोश रहता हूं, वरना मैं भी चुप नहीं रहता, बातें बेहिसाब करता हूं। Yeah!

लोग कहते हैं कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, हम कहते हैं एक दिल लेकर आए थे और हजारों दिलों में जगह बना कर जाएंगे।

ओ जाना अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तेरे नाम। कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते।

लगा लगा लगा रे लगा प्रेम रोग व्याप सुन रहे थे सुनने वालों फ्रॉम द मूवी पार्टनर से ये सॉन्ग हो जाए।

दुपट्टा तेरा नौ रंग दा अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पार्टनर से हमने पेश किए हैं तेरा रंग बल्ले बल्ले।

तेरा रंग बल्ले बल्ले भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। और अब चलिए सुनते हैं मिलकर अलका याग्निक और सोनू निगम जी की आवाज़ में छमियाँ।

शो मिंदर ठुमका भी आप सुन रहे थे सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी शहजादा से ये सॉन्ग हो जाए।

0: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया।
1: कहाँ जाऊंगा,
0: जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे।
1: कहाँ जाऊं,
0: अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे।
1: तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं।
0: तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज।
1: कहाँ जाऊंगा,
0: हैव अ ब्लेस्ड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल नेक्स्ट टाइम।

0: जा।
1: सुनने वालों, एक गीत हम चलाने वाले हैं आप सभी के वास्ते, और फिल्म का नाम है मर्यादा। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जुबा पे दर्द भरी दासिता चली आई।

अभी आप सुन रहे थे जुबा पिदर्ड़ भरी दासता चली आई, बाहर आने से पहले हिजा चली आई। द मुए यानी द माइती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादा था बेचारा, दिल ही तो है।

भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादा था बेचारा, दिल ही तो है। फ्रॉम द मूवी दो रास्ते से हम पेश करते हैं दो रंग दुनिया के और दो रास्ते।

द माइती मुकेश जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी दो रंग दुनिया के और दो रास्ते। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको ना मिल सके ना, यानी वो मुझको मिल सके ना सुबह के उजालों में।

मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में वो मुझको मिल सके ना सुबह के उजालों में। अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी हसरत छुपी रहे। फ्रॉम द मूवी इज्जत से हम पेश करते हैं सुनने वालों

क्या मिलिए ऐसे लोगों से, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी इज्जत से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार, कोई आता है।

0: चलो मुंह हाथ धो लो, याद नहीं आज दावत पे जाना है।
1: अभी तो बहुत वक्त है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होगा। गाओ।
0: मुझे बहुत दुख होता है, मैंने नहीं अच्छी तरह से गाना सीखा।
1: जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए। अरुणा, उन्हीं से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक ही।
0: मैं बताऊं, ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी?
1: कहां से सीखी?
0: सीखी भी नहीं, चुराई है मेरी बातों से।

धीरे धीरे मचल ए दिल बेकरार, कोई आता है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। लता जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

मेरा साया साथ होगा, अभी आप सुन रहे थे तू जहाँ जहाँ चलेगा। जरा सा हम देखे तो चंद्रमुखी है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से द टाइटल हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

नए निका चैन चुरा कर ले गए, कर गए नींद हराम। चंद्रमा का मुख था उसका, चंद्रमुखी था नाम। मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे, सुनने वालों महेंद्र कपूर जी और आशा जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे।

अभी आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में, आशा गीत जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे दिन है बहार के तेरे मेरे एक

अभी आप सुन रहे थे दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे।

चारों वर्णों और आश्रमों में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, और जो कर्तव्य से गिरा हुआ होता है वो छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है।

धन किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाता, मनुष्य खुद ही धन का गुलाम बनकर अपना पतन कर लेता है।

अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है।

कहाँ से हम सभी ने श्रवण की है भजन प्रोग्राम आपके लिए जो पेश किया गया है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से। और समय हो चला है यहाँ से विज्ञापन और समाचार सुनने के लिए, उसके बाद आपसे फिर से हम जुड़ जाएंगे।

चाहिए। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। विनोद खन्ना जी के नाम आज का ये शो एक ट्रिब्यूट मेरी तरफ से टू द लेजेंड। एक फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश, जिसकी शूटिंग के एक एक्शन सीन

0: मेरा यार।
1: इस वीकेंड क्लासिक पर प्ले हो रहे सारे
2: ता हुआ हा? सुना दी हमको किशोरदा, किशोरदा जी की आवाज में।

0: वीकेंड।
1: हाँ, सबसे बड़ा रुपया, रुपया तो होना ही चाहिए जीवन में, उसे अपना आगे बढ़ाने के लिए, काम में लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए रुपया अवश्य ज़रूरी है। ये सुंदर सा गीत स्पेशल स्पेशल मांग किया गया है।

मेरा बालम इतना दूर कि उनसे नैना लड़ गए। उसके बाद आपके लिए है ये सुंदर सा गीत एक बार फिर, यहाँ से फिल्म जादू से आपके लिए पेश करेंगे। फिल्म जादू ने कहते इन फेफ तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म लता जी के आवाज़ में।

लो प्यार की हो गई जीत, फिल्म जादू से यहाँ से हमने श्रवण की है और कह रहा है मंजिल पे ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, हम मंजिल पे ना पहुँचे तो उसे रास्ता नहीं कहते, और दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते मेरे दोस्त। जिंदगी भर साथ निभाना उसे ही सफर हम सफर कहते हैं, कल कोई मुझे याद करे क्यों क्यों कोई मुझे याद करे, कल कोई मुझे याद करे क्यों कोई मुझे याद करे, मुसाफिर जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शाह।

यहाँ से हम चले दुनिया के मजा ले ले, दुनिया के मजा ले ले मेरे दोस्त, दुनिया के मजा ले ले। फिल्म का नाम बहार, इस बार है शमशाद बेगम जी के आवाज़ में।

सुरैया जी के आवाज़ में यहाँ से हमने सुने हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाते क्यों हो, दो पल की जिंदगी के दो पल की जिंदगी देकर दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है, और जो किस्मत में नहीं होते तो किस्मत उसे मिलाते क्यों है।

शमशाद बेगम जी की आवाज़ में स्पेशल स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम बन गया है आपके लिए। यहाँ से जिंदगी का सच बस इतना है मेरे दोस्त, जो अपना हो वही सबसे सबसे ज़्यादा रुलाता है। और ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना ज़िंदगी में ये बात कि कोई किसी का ख़ास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। समझ में आए ना मेरा दोस्त। और कहते हैं कि ज़िंदगी और किस्मत दोनों खफा है, कि ज़िंदगी और किस्मत दोनों खफा है, जब बुरा वक्त चलता है तभी तभी हम तन्हा हैं। बाकी हिम्मत ना हारो, तन्हा में आप

शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम सावन, नेखन तीन नेखन फेफ तक ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ मेरे दोस्त, ऑल दोस गोल्स। इसमें आप सुनते होंगे कि यह साज और संगीत, गीत का धुन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया गया है, कितना अलहदा है, कितना सुनहरा है, कितना अच्छा लगता है वे सुनने के लिए। तो यहाँ से इस बार है आपके लिए फिल्म आर पार से निकलती फिल्म फैफ तक के शमशाद बेगम जी की आवाज़ में

title song film Arpar 1954 ke picturize kiya film Shamshad Begum ji ki awaaz mein sune. Star cast isme hai Shama Gurudat, Shashikala aur Kumkum ji. और कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ से हम बता दें आपको कि जिंदगी जिंदगी ना किसी से नाराज़ होकर जियो, जिंदगी में ना किसी से नाराज़ होकर जियो, ना किसी को नाराज करके जियो, जिंदगी बहुत छोटी है. जिंदगी वाकई में पलक झपकते में यूं ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि जिंदगी बहुत छोटी है. सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहा कर, खुश होकर जियो.

0: इंतज़ार जिनका था वो आकाश में आ गए। तो यहाँ से बहुत प्यार के साथ श्री पंडित राजकुमार महातम जी को स्वागत कहती हूँ। पंडित जी आपको हार्दिक से स्वागत है, स्वीकार कीजिए हम सभी का प्यार भरा नमस्कार। आप आकाश में हो।
1: धन्यवाद जी।

परम ब्रह्म नारायण परम तपाम नारायणो परो देवा सर्वनारायण सनाम ओम नीलं भुजिश्यामल कोमलंगं सीता समारोपित्वाम भागं पाडु महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयू भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः स्वासितराय च मोक्षोक्षरूप ईश्वरों को नमस्कार। संसारी सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। कल्याण करने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार। और अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहां तक हमारा आवाज पहुंची आप सभी को जाकर यथा योग मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुंचे। खासकर राजू फान को जो मालिक है मैं उनकी भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ जो समय प्रदान किया धर प्रचार करने के लिए। हम आप अभी कितना ले रहे थे जहाँ पर संता जी ने रेडियो फोन को माध्यम से मैं आप कितनी अच्छी तरीका से अच्छी ढंग से वह कर रहे थे मैं उनके भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी हम आप सुन रहे थे अंत में संता जी ने कहा कि जीवन जो है बहुत छोटा जीवन है। हम आप बात जानते हैं ना जाने कौन से में जीवन की यात्रा में आ जाएगा ना जाने आपको इस बंधन से बिखर जाएंगे। कहने के साथ है अभी हम आप रात के जात सोने के लिए पता नहीं मालूम नहीं कि कल सुबह होगा हम जगेगी कि नहीं। कहने के साथ आकाशवाणी कृष्ण वालू अच्छा कार्य जो कल करना है तो आज जो आज इस वक्त तो आकाशवाणी कृष्ण वालू कुछ रामायण के माध्यम से आपके सेवा में करने जा रहा हूँ। रामायण कहा गया है रामायण में अनेकों कथा आती है ना अनेकों रामायण है। एक जगह वर्णन आया है कि श्री सीता जी के साथ लगन होने के पीछे श्री सीता राम जी का अयोध्या में पधारे। पहला ही दिन था रात्रि में राम जी शयन करने गए श्री सीता जी अंतपुर में पधारी और उनके पीछे ही लक्ष्मण जी वहां जाकर बैठ गया। श्री सीता जी पीछे से आए उन्हें लक्ष्मण जी से कहा अब मैं चरण सेवा करूंगा चरण सेवा का अधिकार मेरा है। तब सीता जी का वंदन करके लक्ष्मण जी बोले भौजाई आज तक मैं ही चरण सेवा करता था तुम तो आज ही आई हैं। सीता जी ने राम जी से कहा अपने भाई को कुछ समझाओ ना अब यहाँ से जाइए तो ठीक है। यहाँ कहा गया कि अब यहाँ से जाइए तो ठीक है। श्री राम क्या बोले श्री राम की तो लक्ष्मण जी प्राण से भी अधिक प्यारे थे। श्री रामचंद्र जी विचार करने लगा कि लक्ष्मण से किन प्रकार कहूं कि तुम यहां से चले जाओ और लक्ष्मण जी ने कहा मुझे चरण की सेवा करनी है। सीता जी ने कहा आज पर्यटन सेवा तुम करते थे परंतु अब चरण सेवा का अधिकार मेरा है मैं चरण की सेवा करूंगा। और जा करके आकाशवाणी के सुनने वाले श्री रामचंद्र जी ने विचार करके कहा कि कल वशिष्ठ जी ऋषि से ये प्रश्न पूछना और गुरु जी जैसे आज्ञा दे उसके अनुसार करना। देखो
प्रभु राम घट घट में क्षमा सब कुछ जाने वाले हैं, लेकिन सीता मैया कहे मेरे का अधिकार है, लक्ष्मण कहे मेरे का अधिकार है, लेकिन प्रभु राम ने दोनों कहां पर पठाते हैं, गुरु आशीष के पास, सीता जी और लक्ष्मण जी वसी जी ऋषि के आश्रम में गए। लक्ष्मण जी ने कहा देखिए देखिए भौजाई अभी अभी नहीं आई है और मुझसे कह रही है कि अब चरण की सेवा तुम्हें नहीं करनी है। गुरुजी समझाइए, मैं तो छोटा था तब से ही अपने बड़े भाई के चरण की सेवा कर रहा हूँ। सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी अब आप ही इनको समझाइए, अब तो चरण की सेवा का अधिकार मेरा है। देखो कैसे प्रश्न लेके जाते गुरुजी के पास ना। वशिष्ठ जी को बहुत आनंद हुआ। पूछने तो बहुत आते हैं, परंतु ऐसा पूछने कोई नहीं आता। वशिष्ठ जी ने सीता जी को समझाने लगा बेटी मेरे लक्ष्मण जितेंद्र है वो निराकार है, बेटी मन में तनिक भी शंका रखना नहीं, दहिना चरण की सेवा लक्ष्मण जी की करने दो और बाया चरण की सेवा तुम करो। गुरु जी ने ऐसे निर्णय कर लिया, यानी गुरु जी ने ऐसे निर्णय किया, मालिक के दोनों चरण की सेवा दोनों में बांट दिया। सीता जी बाया चरण और सेवा करने और लक्ष्मण जी दहिना चरण की सेवा करने लगी। कहा गए आज गंगा

तीसरा आकर खड़ा हो गया और कहता है कि मुझे चरण दो, अब मैं क्या करूं। आकाशवाणी के सुनने वाले, वहां तीसरा एक भक्त है। एक बार ये कथा मैंने एक बार कहा था ना, तीसरा भक्त कौन है जो इंतजार कर रहा है प्रभु राम को चरण को सेवा करने के लिए। रामायण में 40 भक्त हैं, रामायण में 40 भक्त हैं, लेकिन एक भक्त जो है उन्हें संदेह नहीं था, उन्हें मालूम था ये परमात्मा है। वो कौन है? वो भक्त जो है जिनका नाम आप जानते हैं, वो केवट। केवट को भाव देकर सीता जी ने कहा, इसकी इच्छा है तो चरण की सेवा करने दो। केवट दौड़ता हुआ घर गया, लकड़ी का कठौता लेकर आया। वनवास में 14 वर्ष तक राम जी ने कोई धातु के बने हुए पात्र का स्पर्श किया नहीं। तपस्वी बनकर वन में रहते थे 14 वर्ष पर्यटन, अनाज लिया नहीं। श्री रामचंद्र जी ने तपश्चर्या के दिव्य आदर्श बताया है। केवट जानता था, बात फिर मैं दोहरा रहा हूँ, केवट जानता था, इसलिए वो लकड़ी का कठौता लाया और उसमें श्री रामचंद्र जी के चरण बहुत प्रेम से पखारने लगा। ये केवट पूर्व जन्म में शीर समुद्र का कछुआ था। नारायण के चरण सेवा की उसकी इच्छा थी, परंतु लक्ष्मण जी ने और सेठ जी ने उसे चरण सेवा करने नहीं दी। आज लक्ष्मी जी सीता जी बनी हुई है और सेठ जी लक्ष्मण जी बनी हुई है। केवट मानो उनसे कह रहा था कि उस समय आप दोनों ने मुझे चरण सेवा नहीं करने दी थी, आज आप दोनों खड़े हो और मैं सेवा कर रहा हूँ, परमानंद हुआ। केवट ने पद प्रशाल किया, चरणों का जल मस्तक और ऊपर पधारे, ऊपर छिड़के कौन? केवट। इसके पीछे रामचंद्र जी से कहा, महाराज चरण की सेवा तो मुझे मिली, परंतु आप यहाँ से पैदल चलते हुए जाकर नाव में बैठेंगे, फिर से आपके चरण में कुछ रज लग गया तो कौन जाकर के आकाशवाणी किस निवाले? केवट कहे, प्रभु आपके चरण तो मैंने धोआ, लेकिन अभी आप जो चले गए ना, तो जाकर के ये धूल जिसे कहती है रज लग जाएगा। श्री रामचंद्र ने पूछा, भाई तेरी क्या इच्छा है? केवट ने कहा, मेरी ऐसी इच्छा है कि आपकी मैं आपको उठा करके नाव में बैठाऊं, मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ मांगता नहीं हूं। श्री सीता जी को भी आश्चर्य हुआ कि गांव के अनपढ़ है, परंतु इसका हृदय कैसा शुद्ध है। हमें हृदय देखना चाहे आकाशवाणी के सुनने वाले, हम आप जो जितना महंगा वस्त्र पहन के चले, जितना सुंदर देह में कुछ लगा लें महकने के लिए, लेकिन हमारा आवाज भीतर जो निकलते उसको हम महत्व मानते हैं। देखो यहाँ लिखा ना, सीता जी को भी आश्चर्य हुआ कि गांव के अनपढ़ है, परंतु इसका हृदय कैसा शुद्ध है, श्री राम जी में कैसा प्रेम है। केवट ने श्री राम जी को उठाकर नाव में पधराए। सीता जी और लक्ष्मण जी भी नाव में विराजे। केवट उनको गंगा पार लेकर गया। श्री राम जी ने केवट को मुद्रिका का आज्ञा किया, परंतु केवट ने लेने की नहीं की। उसने प्रभु से कहा, नाई नहीं।

कदी नहीं लेनाई आपन धंधा भाई। कथा बहुत बड़े आकाशवाणी के सुन, लेकिन मैं आपके कुछ संकेत कह रहा हूँ, संकेत से कथा सुना रहा हूँ। हम तो दोनों जाति भाई हैं, इससे उतराई ली जाती नहीं। ये सुनकर लक्ष्मण जी नाराज हो गए। उन्होंने केवट से कहा, तुम्हारी और हमारी जाति एक कैसे है? हम क्षत्रिय जाति के है और तुम भील जाति के हो, फिर भी कहते हैं कि जाति एक है। केवट ने कहा, आपकी और मेरी जाति एक नहीं है, परंतु मेरा और राम जी के जाति एक है। फिर राम जी से कहा, महाराज प्रभु, आज आपको मैंने गंगा पार उतारा है, समय आए तब मुझे भी इस संसार सागर से पार उतार देना। गंगा सागर के केवट मैं हूँ और संसार सागर के केवट आप हैं। केवट जानता था कि श्री राम परमात्मा है। गंगा जी के उस पार किनारे पर उतार कर श्री राम लक्ष्मण जान की आगे चले। श्री राम जी के पीछे श्री सीता जी चलते थे और उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। आकाशवाणी के सुनने वाले ही वाणी द्वारा अपना प्रवचन मैं विराम करने जा रहा हूँ। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदु भाग। हरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।

तो श्री पंडित राजकुमार महात्म जी अपना मूल्य वक्त निकाल कर और आए आकाश में हम सबकी सेवा करने के लिए। हम सबकी तौर से, हमारे पूरा टीम की ओर से, मेरी ओर से भी श्री पंडित राजकुमार महात्म जी को धन्यवाद किया जाता है और एक शुभ दिन हो आपको जी।

किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों रात

0: सेनम अनमोल घड़ी से यहाँ से हम सुन रहे हैं। नाइनटीन फोर्टी सिक्स के ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है मेरे दोस्त। म्यूजिक डायरेक्टर इसका है नौशाद जी, डायरेक्टर है महमूद खान और गाने वाला है सुरेंद्र और नूर जहान।
1: दुनिया मेरी जवान है, आवाज दे कहाँ है।
0: यहाँ से जो आप सुन रहे हैं उस जमाने के लोग, तो उनका याद जो है वो ताज़ा हो गए होंगे, तो ये भी आपको बधाइयाँ हैं कि पुरानी यादें जो अच्छे अच्छे यादें उसे ताज़ा हम कर ले तो कितना अच्छा होगा, रौनक हो जाता है, चेहरे पे आ जाते हैं।

15 मिनट बाकी है 10 बजने में। आप कहाँ हो, कैसे हो? मनपसंद गीत आप चाहते हो सुनने के लिए तो ज़रूर से ताल्लुकात कीजिएगा।

0: दोस्तों, हम तुरंत तुरंत और तुरंत चलते हैं वो है सूरीनाम के ओर। हमारी जनता, हमारे प्यारे प्यारे जनता, आप लोग जानो है जब से एनडीपी का रखेरिंग आयल है दोस्तों, जब से एनडीपी का रखेरिंग जैसे आयल है तो इक्रम कॉन्फ्रेंसिंग बारे में आप लोग जानो है जो चांस तोखी ने बनाए थे अपने जमे पे कि लोग अपना जो जमीन है यानी लांटी जगह जो उसको मिला है वो खरीद सकते हैं लांटी से यानी एकन दोम बना सकते हैं। तो इसमें करीब 15,000 लोग अपना अपना जमीन को और यानी कि जाकर खौन कॉन्फ्रेंसी का एकन दोम कर लिया। लेकिन जैसे ये नया रखेरिंग आयल है भाई, खलैक ओके स्टॉप कर दी इसकी दर्द मखेल मान लेट स्टेर कर नोक बेस्टमैन से जो मिनिस्टर हैगा खेबीबी का वो ये कह दिया है कि बोले कि जितना आदमी जगह पाई से बोले पैसों बोले सब लौटाड़े जो एखन दो में बोले फिर लांटी के हो जाएगा। तो एकर बारे में बहुत घीचा तानी भइल है। तो एंडलक तो का बोले मिनिस्टर का बोले है फन खेबीबी के और वो बोले है बोले ना बोले कि बतिया ऐसे ना है बोले जो आदमी के रोंत हो चुकल है जेके एखन दोम कागज मिल चुकल है सगरो तीकन हो चुकल है बोले ओके हमें ना माखेगा तुरख द्राई करे बोले रखा नहीं बोले बाकी जो कभी तुरख द्राई ना भइल है और पैसा तू भर देले बाट मतलब कि जेकर अभी ना रोंत भइल है और तू पैसा भर देले बाटे का बोले है सेंट्रल बैंक में बोले ओकर पैसा बोले हम तुरख देवे जो तो सखवा दोरो ना जाए। तो ई रखेरिंग एनडीपी और गैगरी रिस्लान के रखेरिंग हैगा और सब क्वालिटी जितना क्वालिटी के आदमी है ओ मापेल है बेफर दुनिया भर के भैया है ही लखरूप है सब मिलजुल के ये सब काम करी। इस क्वालिटी में खाली बपाल एनडीपी ना करे है सब को एक बारे में एनडीपी के और नेक आंध्र पड़ता जो सामोवेर करे सब एक बारे में देखो क्या हुआ है बड़ा जबर घेचा चानी हुए भैया। तो एगो नोतारस है जेका नाम बा जयनंदन सिंह, नोतार जयनंदन सिंह जो है वो एकर बार कार्लो जयनंदन सिंह एकर बारे में का बतावे तरी सुना जाए तो
1: versie. Maar daarvoor moesten er uitvoeringsbesluiten gemaakt worden. En dat duurde op ieder geval erg lang. Was in 2009. Ja. En toen trad de regering Venetiaan af. Ja. Is het in de ijskast gebleven. En in 2016. Ja. En dat weten velen niet. En terwijl het bekend moet zijn. Is de eerste grondconversie onder leiding van Hoefdraad. Dus ja. De regering Boetboot. En het is niet dat ze tegen waren. Maar ze hadden hele hoge tarieven. Je betaalde 30, 40 euro ja. per vierkante meter. Satoki heeft een halve euro van gemaakt. Maar ja. Oké. Maar bijna niemand deed dat. Ja. En dat is dan weer opgenomen tijdens de regering Satoki. Brunswijk zei het dat Brunswijk ook die wilde meewerken. Dus Satoki heeft dus op basis van een nieuwe grondconversiebesluit ja. Maar gebaseerd op de wet. Dus het is helemaal conform. Dat garandeer ik hoor. Is dat gebeurd, die conversie. Nee. En als er eenmaal geconverteerd is. Volgens alle wettelijke regels. Kan je dat niet terugdraaien. Het werd.
0: Dus ये बातचीत हैगा जो नोटारिस कार्लो जननन सिंह यहाँ पे बताए है कि ये जो वेत है ये बौथर्स के तेईस से भी सबन एन कर ले रहा फिनिशियान भी एन कर ले रहा बाकी उस सबके जो पैर फिरकांता मीटर रहा उस सबके प्राइस बहुत ऊंचा रहा बेना फिर तक यूरो पैर फिरकांता मीटर तू उ बेचत रहा और कोई ना की नहीं भैया उतना महंगा आदमी के पैसों भी चाहेंगे तो जब तो के जाए के खरों कॉन्फ्रेंसी से फिर तक यूरोपेर फिर कांते में इतर एगो जगह की ने खाएगा तो बेचने तू जा क्लार खमा के वो किल लेना तो समय पे कोई ना किरत रहा। लेकिन इचियुआ चल गए रहा फिनिशियान भी इन कर ले रहा उकर बात में बौतस के रखेरिंग भी कर ले रहा और जो हुफ दरात भग गए आज वो मांगत रहा इतना में बेचे कहीं लग कोई ना करे तो संतोखी जलेई सेगा तो सस्ता में करे जो जनता के सीकर है इतरे अपन जमीनिया किन लेवे जे माँ वो रहे है। तो अब जी ई रख रहे हुआ आयल थे एक के बंद कर दे से सोचे संतोखी के हैं और यहाँ जैसे जनरल सिंह बोले हैं बोले इतना चाहिए फोकस वेत काम भैल है इमा इको इली खाले वाला चीज के कारभार ना बैले जननन सिंह वेर उगते दे रखे रिंग बहुत से खबर एक कमाक फाने सालव दे मोकलक है ओम खरोत अप ते सेते ना एक हंदो में से बोले फर्सकेलवा इरा द कोस्टन दे स्टेज नाम अन सिंगलक होकर वास पास ऑन द प्रेसिडेंट से तो की वेरन तारीफन फोर्स फला वार दोर फील मेर बुर्गर्स अन आनफ्राग इंदिंदे En voor de rest is helemaal niet dat je Stanley Suropawiro via grond- en bosbeheerke om gelden terug te betalen aan burgers. Bolle een paiswa, bolle terug, maar een pandraha jaar, we admitten leedjukel he. Sinds de invoering van een goedkopere regeling hebben meer dan 15.000 personen een aanvraag ingediend. Jema 659,5 miljoen SRD staatskas mee eigen hem. Abbatia ie via. चकल्लस अब देखो जननन सिंह भी बोले हैं और हम भी बोले ला 300,000 से ज्यादा अने साक लड़े हैं ही भी अपरे के तो ओके कहां से पैसा रहेगा इस सब के भरे के भैया ऊपर देखो जननन से कम ही भी ऑन द दोषी न्यू आलमैन आन सिंगलिक फिनेंशियल फरप्लेटिंग है एट ऑप्कलेट द ढोंगसोमन तीखंद Ondergrond vraagt hij zich af hoe de overheid denkt om te gaan met de belangen van de duizenden burgers die op basis van bestaande regelgevingen kosten hebben gemaakt en verwachting hebben gebouwd. Natuurlijk, het moet een kostenker zijn. Daarnaast wijst hij op dat personen die wel een beschikking hebben ontvangen, maar nog geen eigendomstitel in handen hebben, juridisch gezien mogelijk nog steeds in aanmerking komen van de conversie zolang de beschikking geldig is. Daarmee lijkt het hoofdstuk rond de grondconversie voorlopig nog niet afgesloten. De itraat dheer karja hai, matlab ki bharik hai ga GBB ke, straks een straf rechtszaken ke en zo, aur umange adamien ke paisa lautare, dat lijkt me heel erg sterk, maar ja, aur bapa, isab ke apre paisa na hai, a usab mange, कहा बोले है सब खरों तो हम जाएले भैया जोन आदमी हंसू के बोट इधर उधर के बोट चलावे है मेर सौरख के लियो उस बैरख के बोट जो पा बोले पांच बरिस से उस सबके लांटी पैसे ना भरी से सब्सिडी ना भरी से लांटी भैया बोले द बोट बोनर्स होदर्स जोन बोले

बदल न जाना मौसम की तरह, मूवी के नाम था तलाश की बात में हम जाते हैं। मूवी के नाम है राजा नीघंटीन हंड्रेड एंड फाइव नीघंट का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और जरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा शरबानू राजेंद्र कुमार का ये जो है फिल्म है और जिसमें मूवी का नाम है यहाँ पर बताई गई है इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत आओ सुना जाए।

पसंद हो राजेंद्र कुमार शेरबानू अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ ही साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नहीं खत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी। इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मौफी के नाम था हीरो नंबर वन फन एन सी फन नहीं खत।

और अनोखो अन अन अखियों की झरो के बाद हम चलते हैं। आप जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, हमारा प्यार आप तक पहुंचे। और चाहे ठंडा लगते हो और चाहे गर्मी का मौसम है, रेडियो फाहुन आपके साथ है। और धरती पे जहां भी रहेंगे, हमारा तुम्हारा प्यार अमर रहेगा।

हमसे और तुमसे प्यार इतना हुआ है कि साथ में राज बब्बर क्या कहते हैं वो भी सुना जाए।

होगा तो और क्या क्या नहीं होगा आपको हम जरूर बताएंगे। उसके बाद हम चलते हैं वो मेरी नींद मेरा चैन की ओर है।

और ये प्यार करते ही तो दर्द भी सहना सीख लीजिए, कारण प्यार में दर्द तो जरूर होता है, नींद भी उड़ जाते हैं। और साथी साथी 1982 का एक स्पेशल गजल सॉन्ग फ्रॉम चकदी।

दिलीप सिंह एक हिट गजल सॉन्ग थे। हमारी आर्य साथ साथ हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया मिस्टर कुमार यानू अलका याग्निक क्या सुनाते हैं यार नहीं कल तक हिट सॉन्ग फन जॉनी नंबर वन।

कर दिया और जाने क्यों मुझे मालूम नहीं दोस्तों, अगर आपके मालूम होगा जरूर कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं, मोहब्बत लोग क्यों करते हैं और ये क्यों करते हैं। नतीजा जी आपसे पूछ रहे हैं, अगर मालूम है तो जरूर बता देना।

मोहब्बत करते हैं क्या आपको ये मालूम हो तो जरूर बताना कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो मोहब्बत कई तरह के होते हैं और मोहब्बत अगर आपको मालूम है तो जरूर बता देना। और एक और हम चलते हैं मोहब्बत का सॉन्ग और आज हम मोहब्बत के प्यार के मूड में हैं। हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू की ओर और ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

कि तुम कोशिश करना और कोशिश भी करना रेडियो फाहुन सुनने को दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला जोंग की बप्पी लहरी का। ये जोंग है आशा जी के साथ में, इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

दिल की बातें, दिल ही जाने हैं, लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना, 1972 का नेहन तीन त्वेन सैफन तक का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ की आवाज़ में निखते एन एस एस तक का ये गीत, क्या ख्याल है।

उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ीकिया आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी और राजस्थानी।

अरे गा तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाए फिल्म अभिनेत्री में से निकाल। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और

तुम हंसोगे रोएगे दुनिया या हंसेगे दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति एन सैफ तक का ये गीत है, चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत, हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं, आप सुनोगे मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

गा है, हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। और चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म मन मंदिर। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन सैफ अंत का ये गीत, 1971 का ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्मों में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा, करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54, यानी 405 तक या 505 तक, बहरहाल रौंद 405 तक, 405 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दी है।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निगत ए नसीब का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले है एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेन में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं, यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाजार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं। बहुत सारी सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त। जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया। फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं। जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो फिल्म दिखाने के सिलसिला था, अब यहाँ डूबने मरने की बात हो रहा है। तो चलो सुनते एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी, ये डूबने मरने के क्या सिलसिला है।

हाँ, तो आपने सुने चल दरिया में डूब जाएं कि सिलसिला हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चुने मैं चला रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर प्रेम कहानी में से निकाल कर निकली फैफ सैफ दुख का ये गीत। चलिए आपको सुनाते ये सेमी क्लासिकल इस तरह से। रफी साहेब सुमन कल्याणपुर।

हाय रे सावन बीता जाए, ये शानदार गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए ओ फरफाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, माई तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस श्री

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, ये गीत मैथ मुकेश के बाद एक बार फिर मैथ मुकेश है इस तरह से। फिल्म चांद ग्रहण, फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल रहे हैं ये गीत।

0: पंछी रे वो पंछी, रफ़ी साहब और आशा जी आपको सुनाए हैं और फिल्म हरे कांच की चूड़ियाँ में से निकाल कर हमने चलाए हैं। म्यूजिक डायरेक्टर तो नहीं लिखा है लेकिन साथ से पता चलता है कि शंकर जय किशन के साथ पर हम ये गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है, ये धमाकेदार ये है।
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए
0: क्या
1: थोड़ी सी

क्या बात है, ये शानदार प्यारा दुएत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ। आप सबका स्वागत करते हुए प्लेन में हमने गीत रखे हैं। कहाँ गया? जी हाँ, कहाँ गया? हाँ, ये मिल गया। चलिए देखते हैं, माइत मुकेश, माइत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, सोनिक ओमी के साज पर फिल्म बेटी में से निकाला है इस तरह से।

0: ये क्या किया रे दुनिया वाले, फिल्म में से हम निकाले 1969 का ये फिल्म है और हमने पेश की वो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत, जी हाँ, सोनी कोमी के साज पर फिल्म बेटी में से निकाले हैं। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलो प्रेम पुजारी की ओर बढ़ते हैं। प्रेम पुजारी में देवानंद का कास्ट है और वहीदा रहमान, तो ये प्यारा गीत हम आपको सुना दें, बहुत ज़बरदस्त गीत है। कौन संग्रेस ये गीत नहीं गाए हैं इस तरह से।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।
2: रंगी

जी लता जी, आपको सुनाए रंगीला रे फिल्म प्रेम पुजारी में से हमने ये गीत निकाले हैं। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। हाँ, फिल्म वो दिन याद करो, फिल्म वो दिन याद करो में से निकाल रहे हैं द मैन विद गोल्डन वॉइस और लता जी।

मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगे है जवानियाँ। ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाहौन हिंदुस्तानी आप चुन है फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पर। जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए मैं चला रहा हूँ, आपको चला भी नहीं रहा सुना भी रहा हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म अनीता में से निकाल कर। ये एक डरावनी फिल्म थी लेकिन इतना डरावनी नहीं थी, बहरहाल थोड़ी बहुत डरावनी थी। फिल्म अनीता में से निकाल कर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज।

ना बाबा ना बाबा पिछवारे बुढ़ा खांसता लता जी आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म अनीता, फिल्म अनीता में से निकाल कर हमने चलाए हैं। और अनीता जी के बाद नहीं, फिल्म अनीता जी के बाद चलो हम सुनाते हैं आपको ये गीत।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार, सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है रफ़ी साहब की आवाज़ में जाना पहचाना गीत, जानी पहचानी आवाज़, जानी पहचानी संगीत है।

वाह क्या बात है, ये छेड़खाने वाली गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलते हैं, मैं तुम्हें कैच द हार्ट ऑफ मिलियंस आशा जी के साथ एक बार मुस्कुरा दो निकती तुम्हें सी में। तो 1972 का ये फिल्म, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस फिल्म का म्यूजिक दिया गया है ओपन नैयर के जरिए, जरा देखो तो सही है। जी हाँ सही है।

दिल भर जाने दिल तोड़ तोड़ आशा जी ओ माई टू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में से निकाल कर नहीं ट्वीन सेवन तक 1972 का ये गीत हमने पेश किया ओपी के साथ पर। अगर ओपी ही से हम चल रहे हैं तो लीजिए एक बार फिर ओपी नैयर के साथ पर, इस बार आशा जी ये धमाकेदार गीत फिल्म होंगकोंग।

अभी आप सुन रहे थे दिल की गली। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं उसका बोल ये है, तेरे बिना ये दिल।

अभी आप सुन रहे थे मेरे रहनुमा, तेरे इश्क की गलियों से आप सुनेंगे सुने वालों।

अभी आप सुन रहे थे तेरी यादों में। चलिए ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, दियो तेरी यादों में।

अभी आप सुन रहे थे दिल तेरी यादों में, एक सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, तूने नजरें झुकाई तो क्या हुआ।

हम यहाँ पर सुन रहे थे मुझसे खफा। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल तेरे साथ।

0: यार, ये बानी और प्रीत का आमना सामना ना हो जाए यार।
1: अरे लंदन है लंदन यार, दादर स्टेशन थोड़ी है कि बानी और प्रीत एक दूसरे से टकरा जाएंगे।
2: तुम यहाँ क्या कर रहे हो?

द टाइटल भी आप सुन रहे थे है जवानी तो इश्क होना है। इसी फिल्म से कुछ और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चुनरी चुनरी

ये जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से हमने पेश की है आ जाना चूल्हे मेरी चुनरी सनम। पति पत्नी और वो है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रूप दी रानी।

पति पत्नी और वो इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं रूप देरानी। भूत बंगला है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से आप सुनेंगे ओ सुंदरी।

फ्रॉम द मूवी भूत बंगला से हमने पेश किए हैं ओ सुंदरी। स्टेबिन बेन और जुनिता गांधी की आवाज़ में आप सुनेंगे तेरा हो जाओ। फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है।

है जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से हमने पेश की है तेरा हो जाऊं। आपको सुनाने वाले थे जुनीता गांधी और स्टेविन। चलिए इस बार हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी वेलकम टू द जंगल, ऊंचा लंबा कद फॉरएवर।

अभी आप सुन रहे थे ऊंचा लंबा गुड फॉरएवर। है जवानी तो इश्क होना है, इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं, व्याह करवा दो जी।

0: From the movie Hey Jawani To Ishq Hona Hai, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं व्याकरवादो जी, प्यार करके पछताए, फ्रॉम द मूवी पति पत्नी, और वो से आप सुनेंगे।
1: चंचल कुमारी बनारस से यहाँ आई है।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो से प्यार करके पछताए। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इसी फिल्म से हम पेश करते हैं बिजुरिया।

0: अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बिजुरिया हमने पेश की है आप सभी के वास्ते। संजू राठौर और ईशा मौलविया की आवाज़ में आप सुनेंगे शेके।
1: किस्मत में गुलाम लिखे हुए रानी गुलाम ने नहीं राजा ने मिले करे।

0: माझा किंग.
1: ओ माझे किंग.
2: मी
0: घरी नाही जायचा का?
3: मी तुझी गर्ल, जाने जी गर्ल, मी छम्मक छलो, तू माझा किंग किंग किंग किंग.
4: अभी आप सुन रहे थे शेकी, संजू राठौर और मौविया की आवाज़ में हमने पेश किए हैं. परम सुंदरी है फिल्म का नाम. इसी फिल्म से हम पेश करते हैं डेंजर.
5: अरे डांस करना है ना.
6: अरे तेरे भाई है ना यहाँ पे.

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी से हमने पेश किए हैं डेंजर। गुलाबी साड़ी आपको सुनाने वाले हैं संजू राठौर।

अभी आप सुन रहे थे गुलाबी साड़ी, संजोत राठौर की आवाज़ में। मेरे रहनुमा आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे मेरे रहनुमा। हम बढ़ चलते हैं ये सॉन्ग की ओर, 2026 का जादू।

वाह वाह वाह हो रहा, कैसे मैं उनकी तारीफ करूं दोस्तों, ये तो है और महान कलाकार, हमारे सुनाम के कलाकार जो है उस्तादों के उस्ताद राम प्रसाद राम खिलौन, कमाल की मोहब्बत की तुमने जान जान कहते कहते अनजान बना दिया दोस्तों। यूं ही बातें कहते हैं और ये कार्यक्रम जो है आप ही के नाम आपको और इस बार

शाबाश शाबाश कलाकार हमारी प्रिय और दोस्तों, खास कार्यक्रम में जो ये नंबर मैं आपके लिए प्रस्तुत किए, यूं ही आप लोगों ने जो तार किए और मैं अपनी तरफ से आपको हृदय से फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ। मुझे हौसला मिल रहा है आप जो साथ देते हो ना, खुशी है और ये पल जो है आपके साथ मिल के और बीत जो रहा है। आप ही की हिट स्टेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और साथ देने के लिए यूं ही खुश हूं मैं लोगों से बतला देना क्या है फाहुन, कौन है फाहुन, तार के नंबर बतला देना 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
सकते हो जो है इंटरनेट के जरिए से पाहुन एफएम पेंटेनल के जरिए से, या तो हॉलैंड में आप रहते हो तो दे अबी प्लस दप रेडियो है, डिजिटल रेडियो है दोस्तों। और टेक्नोलॉजी आज इतना दूर जबकि पहुंच गया है ना। तो जिन लोगों के जन्मदिन है आज, जन्मदिन के अवसर पर बहुत से बधाइयां शुभकामनाएं, और यही हम चाहते हैं आपके लंबी आयु हो, मनोकामना आपके पूर्ण हो, जीवन स्वस्थ और सफल रहे आपकी जो है

हर एक की ख्वाहिश तो यही रहता है ना, हमेशा साथ रहे। आयु तो होते हैं 100 वर्ष की, लेकिन ऐसा कार्य करते चलो कि हजारों साल तक आपको लोग जो है समाना जमाना याद करते रहे। हमारी दोस्तों वाहन पे आप चुने आप ही हिट स्टेशन म्यूजिक स्टेशन जो है, और हर एक कोई को एक सीखंद मोयदा कहते हुए फिर भी जन्मदिन पर बधाइयां शुभकामनाएं। अगर जन्मदिन है आपकी है, आज का दिन जो है खुशी के दिन, और जाकर मनाइए अपने परिवार के साथ, हिति प्रेमी ग्राम निवासी जहाँ तक हो सके, और जो है खुशी के दिन खुशी के पल आपस में बांटते चलो।

हॉलैंड पे रहते हो ना? हाँ हो रहे, सोचो क्या से क्या हो गया है और यूं ही पैसा के बाद जब हो रहा है। तो शुरुआत में जब हम सुनाम छोड़ के आए हॉलैंड में, तो रिश्ता जो था है परिवारी रिश्ता जो है, कितना उसमें गर्मी था। आज क्या हो गया है, कुछ ठंडी पड़ गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन यही कहना है कि परिंदे और इंसान को आज़ाद छोड़ दो, परिंदे और या तो इंसान को आज़ाद छोड़ दो। लौट आया तो अपना, और नहीं आया तो समझना कि अपना वो कभी था ही नहीं। दोस्तों यूं ही बात करते हैं और संगीत हम आपके लिए जो पेश करें खास के कार्यक्रम में फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम और आप ही के नाम। क्या करूंगे अब, मेरे पास आकर यही सबक जो आपसे करता हूं, क्या करेंगे अब मेरे पास आकर खो दिया है तुमने मुझे, बार बार बार बार आजमा कर। तो यूं ही ये सवाल आप ही से करता हूं और जो संगीत है केकर नाम आप ही के नाम।

क्या कहूँ मैं, और आपको क्या कहना, तारीफ करना ही पड़ेगा ना। ये यूं ही अनजान तो था जिंदगी में ना, इससे मैं एकदम से अनजान था। छोटी सी उम्र में ही दिल लगा बैठा थे हम दोस्तों, ये छोटी सी उम्र में दिल लगा बैठे थे हम। हमने क्या पता था, मुझे क्या पता था, नशा शराब का नहीं यार का भी होता है दोस्तों। आपसे ऐसा कुछ हुआ है बतला सकते हो, क्योंकि

तो यही तो है पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन। स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन तारक नंबर 0 7 3 2 6 20 7

तो ये शिक्षा भरी और नम्र अभी आप सुने तो अब उसे बात नहीं होगी, अब उसे बात नहीं होगी, पर अब बात उसी की होगी। और अब चाहे भगवान चाहे खुदा, तो ये चाहे छीन ले ये सांसे, पर ये जिंदगी तो नाम उसी की होगी। दोस्तों ये इतना गहरा प्यार आपस में होता ही रहता है ना, आपस में जिंदगी और जाकर हम जीते हैं। क्या हम चाहते नहीं जानते हैं कि भविष्य तो कम से क्या होने वाला है, कि आग दिल में लगी जब वो खफा हुए, महसूस हुआ तब जब वो जुदा हुए, करके वफा कुछ दे न सके वो, पर बहुत कुछ दे गए जब वो बेवफा हुए। हमारे प्रिय दोस्तों आप ही से तार करो मन दम स्वयं तक दरित्वे सस्तक्वें तक स्वयं स्वयं तक देवेंद्र सिंह शिवनाथ, उन्हीं की आवाज में ये खास सिलेक्शन है। आप ही के स्टेशन पाहो नुल स्वयं तक दरित्वे सस्तक्वें तक स्वयं स्वयं तक।

तो अपने ही अंदाज में, और ये दिल की बात है, कभी ऐसा कीजिए ना, हाँ, वही मिलेगा।

आजमा कर कभी देखो ना। तो होने वाली यही है कि जख्म जब मेरे सीने की बाहर जाएगी, आंसू भी मोती बनकर बिखर जाएगी। ये मत पूछना कि किसने दर्द दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे भी उतर जाएगी ना भैया। और यूं ही जो है खास आवाज जो है और देवेंद्र सिंह शिवनाथ मधुर आवाज

দবেন্দ্র সিং সুনা জি না और आप ही से कहता हूँ कि ऐ दिल मत कर इतना मोहब्बत किसी से, इश्क में मिला दर्द तू सह नहीं पाएगा, टूट कर बिखर जाएगा, टूट कर बिखर जाए अपनों के हाथों से, किसी ने तोड़ा ये भी किसी से कह नहीं पाएंगे। और इसीलिए आपको ये मैं सुनाना चाहता हूँ, आप ही ने बनाए हो तो देखो। साई जो लिए हो, साई जो लिए हो, हाँ फिर से, साई जो लिए हो तो नाचना पड़ेगा ना।

ये राज बतलाते चलो भौजी। कैसे बना है यही तो सवाल कर होता है ना, और जवाब सुनते चल दो। रास को रास नहीं रहने देना,

हमारी भाई जो है और खास कलाकार से ये नंबर सुन रहे हो, पाहुन पे आप चुन है, आप ही किससे जन है। हाँ दोस्तों,

Namaste, namaste, namaste, namaste, namo namah. हरिओम एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों. हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार, नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल. मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्णादत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता गुना आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं. बुधवार का रात्रि का साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ यारो संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम खलिंग में गीत और गजल और इस गौत ये याशो उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को पसंद आएगा. तो जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम पे हो, दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे. हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है. मैं ढेर भी लेस्टर प्लेजियर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्थल पर लेस्टर या इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो. जो भी रेडियो का काम है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हैं तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फनमान अख्तर फ्रेडा टेडेंस कंटोर अब फॉलोंडे टेलीफोन नंबर्स कंटोर 0735622247 और स्टूडियो का तार का नंबर है 0735622247. क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ये काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं साथियों. एनी टू फरगेट है ऑन्स क्वालिटी इज ऑलवेज योर गारंटी एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली फील्ड इज ऑलवेज लेकर दरबै फाउन हिंदुस्तानी रेडियो. तोह हमसे पहले आप सभी ने एक अति सुंदर प्रोग्राम सुना जो हमारा मेंटर और हम लोगों का महान नौसर साथी द वन एंड ओनली मास्टर श्याम पूरन जी ने आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया. ये आशा उम्मीद है हमारे फूल टीम की तरफ से जिस तौर तरीके से भाई श्याम आप सभी को सदियों से सेवा करते आ रहा है, ये आशा उम्मीद है कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम जो काफी जबरदस्त था आप सभी को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा. आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद फूल टीम के तरफ से भाई श्याम जी, और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ रात्रि. अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं. हो सकता है कि आप विवाह संस्कार की तैयारियां में भी लगे हो. जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है परम पिता परमेश्वर से हम मिलकर विनती करते हैं, यही दुआ मांगते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए. हरिओम. अगर आपके घर पे एक दुक्का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है, और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे. जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए. फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को रोजाना सुनते रहे आप बंधु, और थोड़ा बहुत तो हम लोगों के बारे में भी बातें शाते करते रहना ना, पनहारते भी तो साहब. कामयाब हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, और हो सकता है कि आप कामयाब इस साल प्रैक्टिकल एग्जाम्स या तो
कल या परसों कामयाब नहीं हुए हो तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु मोरखे सर्वेर अंदाख, दिन पे दिन अपने आप पर थोड़ा और जोर तोर से विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ फुर्तराव बढ़ाते रहना, और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो हो सकता है कि कामयाबी भी जल्द से जल्द आपके कदमों को भी आकर चूम सकते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी बंधु, नहीं तो खीफ है बुआ तो खलेर थे तय सब शोर ऑफ योर वेर हेयर एंड देयर नेवर गिव अ ब्रदर एन असीसा सो सो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल थैंक फॉर हेट लिस्ट। परमेश हमारे फुल टीम की तरफ से सुस्वागतम। फेन फकांसी स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो तापमान तकरीबन 24 डिग्री था और धूप भी निकला था, तो मौसम तो बहुत ही मधुर है धनहाक्षर का, तो आप भी इस मौसम का फायदा जरूर उठाए और खनी तरफ फेन फकांसी। और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से शुभ यात्रा ओक अनफेन वैकेंसी। तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को इंटरनेट के लहरों द्वारा, ओपन वैकेंसी एड्रेस तब लैपटॉप पर स्मार्टफोन पर और लैपटॉप पर, तो आप भी सुनिए हम लोगों को सो बेंटन ब्लेव टू फाइनल्स ऑफ द ओक्ट फॉर यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली हमारे देन हाक शेयर का द वन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। दोस्तों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूं, वो ही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एक फिल्म ललकार नेहरिंग ट्वीन सीटर कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या चुका लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं कि हैव टू नास्ट आउट इट लिव बंधु, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम संगीतकार प्रदर्शन कार्यक्रम कनेक्ट विद ओल्ड इज गोल्ड। उसके बाद आप सुनेंगे सिर्फ नगमे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर द ही मैन हिट मैन द ग्रेट धर्मेंद्र जी ने काम किया है, और बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी है, तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 10:30 रात्रि तक चलेगा साथियों। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना, अनोक जैसे दौर नीत वेका नतीक हम लोग हम आते तो ये रोनाल्डो एस्त दूर पेंटोआ उस अप्लाई करे रहा जैसे खात अब मैं मानी तो फोलखन ओकन फुटबॉल धीरे इन हार्ट एंड नीर माया काम भी चाहिए हो के ना। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना रफी साहब।

रालो महफिले सजालो हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत तू साथियों आज का इस हसीन रात्रि का प्रोग्राम सेफंटीन यूनी ट्विंटक सेशन ट्विंटक जो आप सभी के नाम है, मैं शुरुआत करने वाला हूँ हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही जाना और माना हुआ कलाकार फनकार है बस म्यूजिक डायरेक्टर सांगर एंड प्रोड्यूसर धवन एंड ओली दादा हेमंत कुमार के मधुर आवाज में उन्हीं के याद में ये अति सुंदर बयान आप सुनिए। एक फिल्म सत्ता बाजार 1959 गकंपोनेर्ड डोर डे ब्रदर्स कल्याणजी आनंदजी की चांद के चांद टुकड़ों के लिए द ग्रेट ग्रेट ग्रेट दादा हेमंत कुमार जी।

0: हिला के रख दिया दादा हेमंत कुमार के मधुर आवाज में एड फिल्म सत्ता बाजार 1959 कॉम्पोनेट दो ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी वाह क्या शुरुआत. अगला मैं आपकी तरफ बढ़ते घड़ी की तरफ देखता हूँ तो 15 मिनट गुजर चुका है 8 बजकर और आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर हमारे जनहाक्षर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर और प्रोग्राम चल रहा है संगीतकार पदासा नामक कार्यक्रम नतीजलिक में गीत और गजल और इस गोद. अगला बयान एक बार फिर वही महान फनकार द ग्रेट दादा हेमंत कुमार के मधुर आवाज में आप सुनेंगे एक बार फिर कल्याण जी आनंद जी का बनाया हुआ ये बहुत ही जबरदस्त धुन एंड क्लासिक राम भजन फोयलियालामार
1: आरती मंत्र सिर्फ सारे गामा भक्ति मोबाइल ऐप पर.

कोर्स के साथ डरा हेमंत कुमार के मधुर आवाज में अति सुंदर राम भजन आप श्रोताओं ने सुना है कॉम्पोनेट डोर कल्याण जी आनंद जी वीर शाह। अगला बयान एक पुराना मूवी हीर 1956 महान संगीतकार अनिल बिस्वास का बनाया हुआ ये अति मीठा धुन अल्फाजे है महान लेखक मजरू सुल्तान पुरी जी का और गाने वाले हैं पुराने जमाने के मशहूर गाने वाले डगड़े गीता दत्त जी और दारा हेमंत कुमार मिल के सुनते हैं ओ सजना छूटा है जो दामन तेरा।

At isundar jugal bandi song atro taone suna महान संगीतकार पुराने जमाने का ग्रेट अनिल विश्वास जी के बनाया हुआ है तीसुंदी सुंदर धुन। आई फिल्म हीर 1956 और आवाजें थे द ग्रेट गीता दत्त जी और दादा हेमंत कुमार। 5 मिनट रह गया है 8:30 बजने में। साथियों बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गीत और गजल ओटिस गोल। एक और बहुत ही पुराने जमाने का सॉन्ग आप सुनेंगे और इस बार एक फिल्म इंस्पेक्टर 1956 महान संगीतकार तो खुद ही था, अच्छा गाता था, गाने भी लिखता था, फिल्में भी प्रोड्यूस किया है द ग्रेट ग्रेट ग्रेट दादा हेमंत कुमार एक बार फिर। और इस बार भारत रत्न लता मंगेशकर जी के साथ ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा गीतों में जमाना क्या बात है। इन फन में लिख्स न्यूमर्स वाते फंडारा एंड लता जी आउट हैप गफोंड। Ik heb het nog een paar keer geprobeerd tijdens feestjes en bruiloften, weet je, als openingsnummer met Indra Ramchandran te zingen. Dan praat ik over de jaren 80, mooie tijd. Milke sunte hai ye ati sundar bayan jara alfazo pe zarur dhyan dena SH Bihari ka likha hua ye ati sundar bayan gecomponeerd en gezongen ook door Dada Hemant Kumar Ji.

तो साथियों वक्त हो गया है ना कि हमारे ज्ञानियों के लिए कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने के और इस जमाने के विद्वानों, पढ़े लिखे लोगों, मशहूर लोगों ने जिंदगी, जीवन, लाइफ के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। पुराने जमाने के महाज्ञानी, महाविद्वान एक चीनीस फिलोसोफ श्री कॉन्फ्यूशियस जी ने कुछ बातें कहे हैं जीवन लाइफ के बारे में। अब श्री कॉन्फ्यूशियस जो एक चीनीस महाफिलोसोफ था, लिव्ड फ्रॉम 479 टू 551 फॉर क्रिस्टस, वो कुछ बातें कहे हैं जो मैं जरूर आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं, तो जरा गौर फरमाए। दूसरी कॉन्फ्यूशियस जी ने कहा है जीवन के बारे में साथियों की, द फ्रीडम है ब्रिंग सेल्फ्स इन आर्मुड ग्लुक, अनटफ्रीडम है इस आर्मुड सेल्फ्स आज हेट ऑनग्लुक गाट। Hij die door zijn eigen kracht meester over zichzelf wordt, is als de poolster. Hij beweegt zelf niet, het universum draait om hem heen. Het overschrijden van het doel is net zo erg als het niet bereiken ervan. Er is niemand die niet eet en drinkt, maar er zijn slechts enkelen die de smaak weten te waarderen. Dat klopt hoor. Wie niet aan de toekomst denkt, zal straks grote zorgen hebben. Eentje om goed te onthouden hoor. Vergeet beledigingen, maar nooit vriendelijkheden. Ook een heel goed. Van nature zijn mensen bijna hetzelfde, alleen gewoonten scheiden hen van elkaar. Overwin één moeilijkheid en je houdt 100 anderen op afstand. Klopt als een bus. Overeenkomsten maken een relatie prettig, maar het zijn de kleine verschillen die het interessant maken. Ouders zijn verplicht de ziel van hun kinderen een vorm te geven. En de laatste van vanavond, Kaisri Confucius, Jine Jiwen, Kebarme Satyoki. Ik heb nog nooit iemand gezien die net zoveel van morele waarde houdt als van de schoonheid van vrouwen. तो भी आप कुछ ज्ञान के बातें सुने जो जीवन, लाइफ, जिंदगी के बारे में जाता है। ये अशोमीद लेकर इन बातों को मैं आप श्रोताओं को सुनाया कि इन बातों से कुछ ना कुछ हमेशा की तरह तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, 9 मिनट गुजर चुका है साथियों, 8:30 और 31 सुंदर बयान, मजेदार सॉन्ग रख चुका हूँ प्लेयर पर आप श्रोताओं के खिदमत में। और इस बार महान संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण के साथ पर एड मूवी एजेंट विनोद, और इस बार संगीतकारों और सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स और गाने वालों को ये मेरा कहना है, शहंशाह थे वो, बादशाह थे, क्या नहीं किया किशोर दा हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो फिल्म ऑप्टिमम गाना सुनिए, सबसे निराला रंगीला, एक बार फिर काफी दिनों बाद हसीनों के पुजारी किशोर दा के आवाज में। एंजॉय द म्यूजिक।

है ये गहरे था संगीतकारों का बादशाह और सहिनशाह देवानंद औड़ी हसीनों के पुजारी की शोरदा सबसे रंग रंगीला और निराला एक फिल्म एजेंट विनोद म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण के साज पर सोलह मिनट रह गया है नौ बजने में साथियों अगला अभियान की तरफ बढ़ते हैं महान संगीतकार द ग्रेट जयदेव जी का बनाया हुआ ये मीठा धुन अल्फाजे है महादेवी वर्मा जी की और ये सॉन्ग जो एक नॉन फिल्म सॉन्ग है रिलीज किया गया था नहीं थी एन एन सेवंदर क्वीन ऑफ द इंडियन पॉप म्यूजिक फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री द वन एंड ओनली आशा भोसले जी कैसे उनको पाऊं आली

0: a masterpiece of composing by महान संगीतकार द ग्रेट जयदेव शर्मा जी, महालक्ष्मी वर्मा का लिखा हुआ अति सुंदर बयान जो रिलीज किया गया था 1978 आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में। तो साथियों 11 मिनट रह गया है 9 बजने में, तो ये कुछ मजेदार कहानियां आप सुनिए कुछ सॉन्ग्स के साथ। महान फनकार हसीनों का पुजारी किशोरदा के बारे में जितने तारीफ किया जाए कम है, या आप खुद सुनिए।
1: ना हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा।
2: दोस्तों एक बार कुछ ऐसा हुआ जब किशोरदा किसी के कहने पर कम पैसे लेकर एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गाने का संगीत और धुन सुनने के बाद किशोरदा ने सलिल चौधरी से इस गाने के लिए किसी दूसरे गायक को चुनने का अनुरोध किया। किशोरदा गाने के लिए तब राजी हुए जब सलिल दा ने इस गाने के लिए किशोर कुमार को लाने की असली वजह बताई। क्या थी वो वजह दोस्तों, और कैसे किशोर दा ने इस गाने से रचा था इतिहास, सब कुछ जानेंगे आज के इस एपिसोड में।
1: नैन हमारे सांझ सतारे।
2: नमस्कार दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
1: देखे लाखों सपने।
2: सलिल चौधरी जिनके पसंदीदा गायक शुरू में हमेशा मुकेश जी रहे, किशोर दा को एक साधारण गायक भी नहीं मानते थे। सलिल चौधरी को किशोर दा की ताकत का एहसास करने में लगभग 17 साल लग गए।
1: कोई तो गम अपनाता, कोई तो साथी।
2: फिल्म मेरे अपने के गाने कोई होता जिसको अपना की रिकॉर्डिंग के दौरान सलिल चौधरी ने सबके सामने किशोर दा की आवाज की ताकत को स्वीकार करते हुए किशोर दा को गले लगा लिया। दोस्तों आप हमारा यह वीडियो भी देख सकते हैं जहां हमने यह तथ्य साझा किया है कि कैसे एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान सलिल दा ने किशोर दा की आवाज की शाश्वत शक्ति को स्वीकार किया था, और फिर साल 1971 के फिल्म मेरे अपने के गाने के साथ सलिल चौधरी और किशोर दा की ऐसी जुगलबंदी शुरू हुई जो महान किशोर कुमार के दुखद निधन के 2 साल बाद समाप्त हुई।
3: निस दिन निस

0: और फिर साल 1972 में फिल्म मेरे अपने की रिलीज के ठीक एक साल बाद अनिल धवन और जया भादुड़ी अभिनीत एक छोटे बजट की फिल्म अन्नदाता रिलीज हुई। संगीत सलिल चौधरी का था और गीत बेहद प्रतिभाशाली लेकिन अज्ञात गीतकार महान योगेश जी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म का निर्देशन असित सेन ने किया था। चूंकि फिल्म का बजट उतना ज्यादा नहीं था इसलिए निर्देशक असित सेन ने अनिल धवन को मुख्य अभिनेता के रूप में लेने के बारे में सोचा, लेकिन संगीत निर्देशक के रूप में सलिल चौधरी फिल्म के संगीत के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहते थे। हमेशा की तरह सलिल चौधरी की पहली पसंद मुकेश जी थे। एक गाना भी रिकॉर्ड हुआ।
1: चलते रहे दिलों को अजनबी तेरा से।
0: दूसरी पसंद थे मन्ना डे। मन्ना डे और सबिता चौधरी द्वारा एक युगल गीत भी रिकॉर्ड किया गया।
2: हाँ अब क्या रहना किसी से क्या कहना चल दे वहां तुझको मिले।
0: लेकिन गुजर जाए दिन, गाने के दौरान योगेश जी और सलिलदा दोनों ने एक साथ किशोरदा का नाम सुझाया। सलिल चौधरी ने डायरेक्टर से इस गाने के लिए किशोरदा से बात करने के लिए कहा, लेकिन तीन गायकों को एक साथ लाना फिल्म के लिए काफी महंगा था। और फिर योगेश जी ने खुद किशोरदा को फोन करके बताया कि सलिलदा एक गाने के लिए किशोरदा को चाहते हैं, लेकिन बजट की कमी के कारण प्रोडक्शन यूनिट किशोरदा को उनकी उचित फीस नहीं दे पाएंगे। जब किशोरदा ने सुना कि सलिल चौधरी इस गाने के संगीत निर्देशक हैं, तो बिना यह जाने कि यह किस तरह का गाना है किशोरदा ने तुरंत पुष्टि की। लेकिन किशोरदा को नहीं पता था कि उन्हें किस कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। किशोरदा पहुंचे सलिल चौधरी के पास। सलिल चौधरी ने उसी धुन का एक बंगाली गाना बजाया और किशोरदा को पहले इसे सुनने के लिए कहा। यह गाना श्यामल मित्रा जी का था, चोले जे जाए दिन, जो पहली बार 1970 में रेडियो पर प्रसारित किया गया था, जो शायद एक बंगाली आधुनिक गीत या पूजा एल्बम गीत था। किशोरदा ने गाने को ध्यान से सुना।

0: कर भी।
1: किशोरदा बेहद घबरा गए। सलिलदा, आप चाहते हैं कि मैं ये गाना गाऊं? पूरे गाने में कितने सारे तेज उतार चढ़ाव हैं सलिलदा। आप मुझसे यह गाना गाने की उम्मीद ना ही रखे तो बेहतर होगा। तुम्हें इसे गाना ही पड़ेगा किशोर। केवल तुम ही यह गाना उस तरह गा सकते हो जिस तरह से फिल्म में इसकी जरूरत है। मुझे एक गहरी लेकिन खुली आवाज की जरूरत है किशोर। गाने की फिल्मांकन अनिल धवन पर है जो साइकिल चलाते चलाते ये गाना गाते हैं। यहां गति होनी चाहिए, गहरी आवाज का मॉड्यूलेशन होना चाहिए और साथ ही आवाज बहुत स्पष्ट, खुली और ऊंची होनी चाहिए, कहा सलिलदा ने। किशोरदा, जो सलिलदा की बात सुन रहे थे, धीरे से एक कुर्सी पर बैठ गए और जब तक सलिलदा ने किशोरदा से अपनी बात पूरी की, उन्होंने किशोरदा को फर्श पर लेटा हुआ पाया। सलिलदा और योगेश जी किशोरदा की हालत देखकर हंसने लगे। सलिल चौधरी ने कहा, उठो किशोर, इस गाने की कई बार रिहर्सल करो। मैं जानता हूं कि यह एक मुश्किल गाना है, लेकिन मैं इस गाने के साथ अन्याय नहीं कर सकता और अगर तुम यह गाना गाओगे तभी इसे उचित न्याय मिलेगा जिसका ये हकदार है।

ऐसा कहा जाता है कि एक टेक में कई मुश्किल गाने गाने वाले किशोर कुमार को भी इस गाने में परफेक्शन लाने के लिए 18 रीटेक करने पड़े। बाकी इतिहास है दोस्तों।

0: किशोरदा ने फिल्म के लिए दो गाने गाए। दूसरा गाना है ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा।
1: मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, आए लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा।
0: किशोर कुमार जिन्होंने इस फिल्म के गाने गाने के लिए कम पैसे लिए थे, इसे आसानी से हल्के ढंग से रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन नहीं। संगीत निर्देशक सलिल चौधरी से हरी झंडी मिलने तक किशोरदा रुके नहीं। संगीत के प्रति समर्पण और प्रेम ने ही किशोरदा को यह करने पर मजबूर किया।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 3 मिनट गुजर चुका है 9:00। 17 यूनी 2020 का हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड। फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एनाटोलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोशल लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एनाटोलिक बदंत फॉर हेट लिस्टन। तो जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से जरूरी खबरें इश्तिहारे या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो और गामान हो और गा वुमेन शोज वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का प्रोग्राम को सुनते रहते हैं लंबलिक एंड वेड वाइट। तो आपका इश्तिहार में तो 4 चांद लग जाएगा बंधु। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है ना, अब मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को होलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल फन मांडा अख्तर फ्रेरा अख्तर इस कंतोर यूर अब दिफॉल हंदे टेलीफोन नंबर्स कंतोर 07-6-20-6-20-4 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-3-20-6-20-7-7। तो जो भी रेडियो का काम होना देन कन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो मैं फन हर्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना साथियों और रिक्लाम बनाते रहना, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। हिंदुस्तानी रेडियो फॉलो ऑन सोशल मीडिया एंड ऑमरूपर्स डन होती ऑफ सिटी heel binnenkort waar we voor u live gaan optreden. Ik denk al aanstaande zondag, als u de social media's volgt van bepaalde omroepers waar er door zijn reclame gemaakt. Hè? Dus ik hoop dat ik u daar zie. तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। वादा के मुताबिक एक दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम के तरफ। बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म अनोखा मिलन तक, जो रिलीज किया गया था निकलिंग टू इन सीक्वल तक में, और सभी फिल्म के जो गाने हैं फिल्म अनोखा मिलन का मैं बीते हुए हफ्ते आप सभी को सुना चुका था। अब लेकर चलते हैं, जरा दिल को थाम लीजिए भाई और बहन या हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनेंगे जबरदस्त मूवी जो रिलीज किया गया था तक में, जो पूरे सुरीनाम देश में हलचल मचा दिया था। ये मूवी फिल्म यादों की बारात का बताई। इस फिल्म में मिड नाइट शो भी चले लगला उस टाइम भैया आदमी लोग, हम न जाने कितना देर रहे में खड़ा हुए काटता किने की फिल्म देखे का मनो खेल खुद was pas begonnen met werken bij de chirurgo en ik had ik denk mijn tweede salaris al binnen. Dus nou, dan weet je hoe het gaat, hè? Vrienden, families, een beetje een kaartje geven, en kon het toen al. En ik was zo trots dat ik zo jong bij chirurgo mocht werken. En ik, we waren naar die film gezamenlijk gegaan. Ja, Bad in Theater de Parel, ik denk dat
Zeker een paar weken of denk anderhalf maand is Jeroen Draaibeela dag en elke dag een paar voorstellingen van deze populaire, beroemde film. Oh, deze film, ja, ook in Barat mee. Dharmendra ji ne kaam kiya hai Vijay Arora ji ke saath aur Sinat Aman is film mein bhi kaam kiya hai Malkaye Husn Malkaye kya baat hai Beauty Queen aur Tariq Khan Neetu Singh Ajit bhi is film mein kaam kiya hai Mahan sangeetkar Rahul Dev Barman ji ke saanch hai aur kuch gaane mein सेलेक्ट कर चुका हूं आप सभी को सुनाने के लिए तो मिलकर सुनते हैं फिल्म यादों की बारात का ये सुपर हिट सॉन्ग जो आशा भोसले जी और रफी साहब जी ने मिलकर गाए हैं सुपर हिट सॉन्ग जब निकला था तो काफी हलचल मचा दिया था और अगर आप देखें इस वक्त कि कितने लोग ये नगमा को vanaf, dan heb ik het over vanaf 2020, hebben zeker meer dan 6 miljoen mensen naar dit nummer geluisterd. Dat is heel veel hoor, voor zo'n oud nummertje. Chura liya hai tumne jo dil ko. Us zamane ke sabhi band ne ye nagma shaadiyon mein, shows mein, sabhi mein gaate the na. Bahut hi popular song hai. To mil ke sunte hai kya awaaze the. उस जमाने में ये दोनों महान फनकारों का आशा जी और रफी साहब जी का ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

masterpiece of composing by maestro Rahul de Bermingi uit de film Yadoki Barat 1973. Mahan gaane wale do Asha Bhosle ji aur Rafi sahab ji ke awaazon mein Alfa se tha the great Majroor Sultanpuri ji ka. 15 मिनट गुजर चुका है साथियों, 9:00 अगला बयान जबरदस्त सॉन्ग फ्रॉम द मूवी यादों की बारात 1973 आर डी बर्मन के साथ मजरू सुल्तानपुरी के अल्फाजे, और इस बार आवाजे है आशा भोसले जी और किशोर दा, ऑप्शन बेस्ट लेकर हम दीवाना दिल

दिल को छू लिया ये तीसरी दरमियान है जो फिल्म यादों की बारात 1973 तक साथ दे रही थी पद्मिनी कोल्हापुरी और सुषमा श्रेष्ठा और ललित सिंह पे थी भारत रत्न सुरेखा देवी स्वयं सरस्वती माँ हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द वन एंड ओनली लता मंगेशकर जी। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, एक जबरदस्त सॉन्ग भी है यारों की बारात इज द मूवी नेम 1973 कंपोनियर और आर डी बर्मन आवाज है किशोर दा और आशा भोसले जी का। आपके कमरे में भी कोई रहता है जब देख

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3

शाबाश, क्या हलचल मचा दिया था उस जमाने में। नेक दिन ड्रीम सीमट में ये मूवी जो रिलीज किया गया है, सूरीनाम देश हिल गया था। संगीत इतना महान था इस फिल्म का कि लोग बार बार इस फिल्म को जाकर देखते थे। अलेन ऑन द म्यूजिक। तो साथियों, 32 मिनट ऊपर 9 हो चुका है। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम, और नगमे आप सुन रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर द ही मैन द हेट मैन द ग्रेट धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं। और हम पहुंच चुके हैं फिल्म यादों की बारात तक, जो रिलीज किया गया था इन 1937 में। अगला बयान एक और जबरदस्त सुपरहिट सॉन्ग है जो काफी नाम कमाया था उस दिनों में, मेरी सोनी मेरी तमन्ना, ओ मेरी सोनी भैया। एक फिल्म यारों की बारात, और एक बार फिर है सीनो का पुजारी किशोरदा अपने ही अंदाज में आप सभी को सुनाने वाला है ये अति सुंदर बयान। एंजॉय द म्यूजिक, आर डी बर्मन जी का।

0: क्या बात है, अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना मेरी सोनी मेरी तमन्ना। अरे फिल्म यादों की बारात निकटिन द्रीन सेवंत किशोरा और आशा भोसले जी के आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुन रहे थे। घड़ी की तरफ देखता हूं साचे तो 8 मिनट गुजर चुका है 9:30। तो कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर के पुजारियों के लिए। अर्ज क्या है कुछ ताजे ताजे कुछ बेवफाई के बारे में कुछ शेर से भेजा है जिगरी दोस्त भाई भूपेंद्र जी जो सदियों से मेरे खातिर लिख लिख कर भेजते रहते हैं। अब मैं पढ़ देता हूं आप सभी के खिदमत में। अर्ज क्या है साथियों भाई भूपेंद्र जी ने कि तेरे प्यार का सिला हर हाल में देंगे, तेरे प्यार का सिला हर हाल में देंगे, खुदा भी मांगे ये दिल तो निकाल देंगे। अगर दिल ने कहा तुम बेवफा हो, अगर दिल ने कहा तुम बेवफा हो तो इस दिल को भी सीने से निकाल देंगे और वो भी आपके लिए। दिल में आने का तो रास्ता होता है, दिल में आने का तो रास्ता होता है पर जाने का नहीं यारो। इसलिए जब भी कोई इंसान जाता है तो दिल तोड़ कर ही जाता है। कभी तकदीर ने साथ छोड़ा, कभी जिंदगी ने आजमाया, कभी गैरों ने बर्बाद किया तो कभी अपनों ने रुलाया। कोई नहीं है आज के वक्त में किसी का, किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ। वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। किसी अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुरा अक्सर वही बनता है जो अच्छा बन के टूट चुका होता है। बात सही है। हम तो तेरे दिल के महफिल सजाने आए थे, तेरी कसम तुझे अपना बनाने आए थे। किस बात की सजा दी तुमने हमको, किस बात की सजा दी तुमने हमको, बेवफा हम तो तेरे नहीं थे। उन्हें नफरत थी हमसे तो इजहार क्यों किया, उन्हें नफरत थी हमसे तो इजहार क्यों किया, देना ही था जहर तो फिर प्यार क्यों किया। देकर जहर कहते हैं पीना होगा और जब पी लिया तो क्या हुआ, मैं मर गया। तो ये था कुछ शेर से, आगे के कार्यक्रम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को। अगला बयान है ये भी द लास्ट सॉन्ग है फिल्म यादों की बारात का। और यादों की बारात तो निकली है और ये सुना रहे हैं किशोर दा और रफी साहब जी मिलके अनोक, साथ ही साथ फिल्म लास्ट नंबर।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि मैं आज का प्रोग्राम पेश करूं, मैं आपको एक 15 साल पुराना गाना सुनाता हूं, इस प्रार्थना के साथ कि मेरी आवाज उन कानों तक पहुंच जाए जो कभी ये गाना मेरे साथ गाते थे, मेरे अपने भाई।

Composing by Maestro Ari Berman from the movie Yadu Ki Barat 1973. Do Mahan gaane wale hamare Bollywood film industry ka Suroka Bacha, the King of Melody, Rafi Saab aur Sangeetkar ka Bacha aur Sahinsa, the one and the only Kishore da. Kya quality aap suni is gaane mein ya hila ke dhar diya. 14 मिनट बाकी है साथियों 10 बजने में, तो सभी नगमे फिल्म यादों की बारात का मैं सुना चुका हूं आप सभी को। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1973 तक में, फिल्म दो चोर, बहुत ही मजेदार और सुपरहिट मूवी था। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाय हुस्न द ग्रेट तनुजा जी के साथ, कायन सिंह भी इस फिल्म में काम किया है और असित सेन जी भी इस फिल्म में भाग लिया है। सभी गाने मजरूह सुल्तानपुरी जी ने लिखे हैं और एक बार फिर संगीत दिया है मैस्ट्रो आरडी बर्मन ने। तो मिलके सुनते हैं फिल्म दो चोर से सुंदर सुंदर गाने, काली पलक तेरी गोरी, किशोर दा का ये सुपरहिट सॉन्ग आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

फाहम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। ले तो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आशा हूँ हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूँ यारो तो 3 मिनट गुजर चुका है 10:00। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एंड अटिलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सुसु लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अटिलिक बर्डंट फॉर हेथ लाइस्टर। तो जो भी रेडियो का काम हो देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बाय ऑन्स ऑफ द एस्ट प्लांट। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें तेरेंस कंटोर यूर फन मांडा टू फ्राइडा ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 070-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 070-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। बिनती नोखिन लेत फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी हम लोगों का मेंबर बने और ओ को भी बनाए आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एरसेंट है बहु कौन से एक कराओक टीम कराओक संस्कृपिय वार एन पार ओमरूपर्स एन ओमरूपस्टर्स ऑल लाइफ एंड सिंग सेइंग फॉलो ऑन सोशल मीडिया एन ऑन कोलेगास। Ik denk dat we aanstaande zondag ergens gaan optreden. Dus volg het, dan zult u het zeker zien. En dan bent u ook van harte welkom. To abhi jal se jal hum logo ka member bane aur roko bhi banaye. सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें ऑफ 070-365-2247 एंड फ्राग नार ऑन्स टीम लीडर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का द वन एंड द ओनली मैस्ट्रो जॉनी नंबर वन। तो आप भी आकर इस जो छोटा सा और मोटा सा फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बन चुका है और बनते जा रहे हैं आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए शामिल हो जाए शामिल हो जाए आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। बेलो अपने उसी मतलब 3-5-6-6-2-20-6 फिर तक दौड़ती रेक्स रेक्स दौर फॉर बॉन्ड नारों से टीम लीडर माइस्ट्रो जॉनी नंबर वन। वादा के मुताबिक एकदम बढ़ते है प्रोग्राम की तरफ। कुछ नगमे रह गया था सुनाने को फिल्म दो चोर से तो एक अति सुंदर बयान आप सुनिए। मेरी जान जरा कहना तो मानो ये सुनाने को जा रहे है आप सभी को हसीन का पुजारी और संगीतकार का बादशाह और शहिनशाह द वन एंड ओनली किशोर दा आर्टी बर्मन के साथ।

कहना तो मानो आज फिल्म दो चोर नहीं थी तो इन हसीनों का पुजारी किशोर दा के मधुर आवाज में थी सुंदर म्यान आप श्रोताओं ने सुना आज नहीं कंटिन द्रीजन सीख फिल्म तक दस मिनट गुजर चुका है साथियों, दस बजकर धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान आप सुनिए। यारी हो गई यार से आई फिल्म दो चोर, और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सरस्वती माँ स्वयं आप सभी को ये नशीली और गांजा से भरा हुआ गाना को सुनाएंगे।

आप श्रोताओं ने सुना कि यारी हो गई यार से जरा थूमक थूमक। एक फिल्म दो चोर से ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं सुन रहे थे। तो यारो घड़ी की तरफ देखता हूं तो 16 मिनट गुजर चुका है, 10 बजकर तो कुछ आखिरी शेष हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अर्ज किया है कि जिनकी शायरी में होती है सिसकिया अक्सर, जिनकी शायरी में होती है सिसकिया अक्सर, वो शायर नहीं किसी बेवफा के दीवाने होते हैं, ये कहते हैं शायर। दुआ मांगी थी एक आशियाने की, दुआ मांगी थी एक आशियाने की, आंधियां चल पड़ी जमाने की, मेरे गम को कोई समझ ना सका क्योंकि मुझे आदत थी मुस्कुराने की। मंजिल क्या है रास्ता क्या है, हौसला अगर हो तो फासला क्या है, वो तो सजा दे के जा बैठे, वो तो सजा दे के जा दूर जा बैठे, और अब किसे पूछूं मेरी कथा, अब किसे पूछूं मेरी खता क्या है। सब कुछ भुला दिया ये मेरी वफा का कैसा सिला दिया, सब कुछ भुला दिया ये मेरी वफा का कैसा सिला दिया, मौत हमें आती नहीं, मौत हमें तो आती नहीं, और जिंदगी हम जी पाते नहीं। आखिर साथियों आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, रोए तो बहुत तेरी बेवफाई के बाद, रोए थे तो बहुत तेरी बेवफाई के बाद, तेरी याद ना गई तेरी जाने के बाद, तुम हमेशा कुछ रहना, तुम हमेशा खुश रहना, बस मेरे साथ किया ये एक वादा जरूर निभाना। तो था कुछ आखिरी शेर्स, अगला बयान और ये भी आखिरी सॉन्ग है फिल्म दो चोर का, जबरदस्त सॉन्ग है, लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए, मोरा छोटा सा बलमा अभी प्यार ना जाने।

0: क्या बात है, हाय रे मोरा छोटा सा बलमुआ, अभी प्यार न जाने। मजेदार सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना और ये भी आखिरी सॉन्ग था फिल्म दो चोर का जो रिलीज किया गया था नेजिंद्रियन सेवंतक में। धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है साथियों, 8 मिनट रह गया है 10:30 बजने में, तो सभी नगमे फिल्म दो चोर का आप सुन चुके। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था नेजिंद्रिय सेवन तक में, फिल्म फागुन। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाय हुस्न, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस वहीदा रहमान जी के साथ साथ दे रही है भी मशहूर मलकाय हुस्न द ग्रेट जया बहादुरी जी, इस फिल्म में भी काम किया है। और महान अभिनेता विजय अरोरा भी इस फिल्म में काम किया है। सभी फिल्म के गाने मजरू सुल्तान जी ने लिखा है और इस बार है संगीतकार एस डी बर्मन जी, सचिन देव बर्मन जी। तो उसी फिल्म में से आप ये अति सुंदर बयान सुनिए लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में, एट नेकिंग द्रियन सेवन तक कि पिया संग खेलो होरी।
1: हम रंग नहीं डालेंगे, आओ ना।

अति सुंदर बयान श्रोताओं ने सुना। अइदु फिल्म फागुन एकती इंद्रियन सहित सचिन देव ब्रह्मन जी के सांच पर अति सुंदर बयान आप श्रोताओं सुन रहे थे। और अल्फाज था मजरू सुल्तानपुरी जी का, गाने वाले थे लता मंगेशकर जी कोरस के साथ। तो धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है साथियों, यहीं तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ आवाज के जरिए सरनामी संगीत लेकर। पहला और दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में सिर्फ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे आप सभी इजाजत दें, हमारे बात आप सुनेंगे कुछ देर तक विजयंती बहन जी को, और 11 बजे विज्ञापन के बाद आप सुनेंगे एक हेरहालिंग फमिदाख प्रसेंटेर द न्यूज दोरोंस बड़का भैया एरवार द कोलिखा द वन एंड ओनली जर्नलिस्ट एंड कॉरेस्पॉन्डेंट फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो मैस्ट्रो रोमियो होस जी के जरिए। और उसके बाद अपन से नख प्रोग्रामिंग, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना साथियों, मजे लेते रहना और हमेशा की तरह जाते जाते तो कुछ गुनगुना देता हूँ। और ये नगमा जो मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ दिया पिकाल ऑपनोम बाई मैस्ट्रो अशोक अयोध्या जी एंड बिन कोर्ट खात द्रोम दिस नवेदी दौक

फ्रॉम द मूवी यमला पगला दीवाना से आप सुनेंगे और आपको सुनाने वाले हैं उमर नदीम के साथ में श्रेया घोषाल जी। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सौ बार ये कहे दिल कि आजा तुझे प्यार करे, फ्रॉम द मूवी यमला पगला दीवाना से आपको सुनाने वाले थे उमर नदीम के साथ में श्रेया घोषाल जी। मैंने दिल तुम्हें दे दिया, अलका यज्ञिक के साथ में सुनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं ये सॉन्ग।

सनम फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किया है अलका याग्निक और सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं। एक और सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं इसी फिल्म से, आप सुनेंगे तूने दी बेकरारी ए मेरे सनम।

बेकरारी ए मेरे सुनम, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किए हैं। आओ सुनाएं प्यार की एक कहानी। एक था राजा, एक थी लड़की दीवानी।

फाहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और यहाँ से कुछ मिली जुली पुरानी और नए गाने से हम आप लोग को सेवा करते हैं, सेवा करेंगे दोस्तों, और आपको हम यहाँ से खुश करेंगे, और आप जहाँ भी हो हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहो, या गाड़ी में बैठे हुआ होगा, या घर में, या कमरे में, या श्रीनाम देश में, या जहाँ भी हो हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम आप लोग बस सुनते रहो, और आपको हम प्यार भरी गाना, पुराने गाने, कुछ नए नए गाने से हम आपको सेवा करेंगे। अब देखा जाए, कोई बता दे दिल है कहाँ, आपको मालूम है कि आपका दिल कहाँ है। एक द्वैत सॉन्ग की ओर हम जाते हैं, फिल्म के नाम है मैं चुप रहूंगी, और सुनील दत्त मीना कुमारी का ये गाना है हमारे दोस्त

कोई बता दे ये दिल है यहाँ, और दर्द भी वही होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है, और ये गाना मैं चली आप सभी लश्तराज के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली और कहाँ चली, आप तो अपने जानते कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है, कहते हैं कितना हसीन है मौसम और मौसम कब हसीन होता है, जब अगर आपके दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है, तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा चाहे जो भी मौसम होगा लेकिन आपको हसीन जरूर लगेगी। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में ओल्ड रोमांटिक हिट्स दोस्तों कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आप के साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम की ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आज़ाद का ये फिल्म नई खतीन 5/5 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले और जाने कहाँ, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

मेरे हम सफ़र हो मेरी हम सफ़र, लता अमोगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भू मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बई, नेहा इन फिर का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब कयामत होगी, मिस्टर एक्स बम्बई 1964 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं, और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता की ओर हम बढ़ते हैं, जो भी महबूब मेरे के गाना है, पत्थर की सनम 1964 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: Film Patharikasanam, Patharikasanam, नहीं कहती सैफ ने सस्ती इस गाना का हमने निकाला है जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, तो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथ ही लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है,

से पद पे चला उस पद पे मुझे मुझे लता जी फिल्म का नाम है यादगांठ से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन बुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार, उस दिन ये आंखें क्या होगा सुनने वालों, आपने खुद ही सुना है। हम चलते हैं, ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में शमाई है। और ये फिल्म, ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे, मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और होल्डर बिरमन के सांच में और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना नेहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

जब हम जवां होगे और जब हम जवां होगे तो तुझे हम याद, तुझे याद हम करेंगे दोस्तों। और ये बहुत नेकत इंद्रिय तख्ता ये फिल्म है, जब हम जवां होगे दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं, और हमारा प्रोग्राम पुराने नंबरों की बाहर प्रोग्राम यहाँ से चलते हैं, और अपना पुराने गाने की ओर हम बढ़ते हैं और चलते फिल्म अनमोल की ओर। नीखती नीखने शस्त्र का भीगा भीगा बदन और भीगा भीगा बदन और मेरा चंदन की तरह महकते हैं, फिल्म अनमोल मोती का ये गाना दोस्तों। आओ मिलकर हम सुना जाए।

और क्या दोस्तों, इस गाना बहुत पुराना गाना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और ये छोटी सी मुलाकात जो है, और ये विजयंती माला उत्तम कुमार का ये गाना है, और ये पुराना गाना हम आपके लिए यहाँ से चलाते हैं।

और छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई। और प्यार में क्या क्या हो जाता भैया, छोटी से ही मुलाकात में प्यार हो जाए और बड़े मुलाकात में मार हो जाते हैं, होता है ना। और हम प्यार का सौदा कर बैठे विजयंती माला और लता मंगेशकर फिल्म जिंदगी, जिंदगी का ये गाना है निखिल होंदत और फिर शस्तक का, जिसमें राजेंद्र कुमार राजकुमार विजयंती माला जीवन महमूद हेलेन ने और इसमें काम किया है हमारे दोस्तों।

हम प्यार के सौदा करते हैं और एक बार दोस्तों और प्रकाश और ये गाना है ओ राधा तेरे बिना और ये मस्त भरी गाना है फिल्म राधा का सनम गोविंदा जूही चावला ने इसमें काम किया है और आओ मिलके इस गाना को आज हम सुना जाए ये इसमें कौन सा मजा है दोस्तों।

अपना यही है। ओ राधा तेरे बिना क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों और ये गाना जो हम आपके लिए अब चलाते हैं ये भी एक बहुत पुराना गाना है, कोई प्यार की देखे जादूगरी। ये भी एक फिल्म है जो अभी हमारा पैदाइश नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन जितनी पुराना ही गाना है उतनी मजा उसमें है। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे लिस्टनर्स, आओ मिलके और सुना जाए ये क्या है।

कोई प्यार के देखे और जादू भरी दोस्तों। और आगे को बढ़ते हैं कि हैं, और दोस्तों ये गाना जो अब हम चलाए जाते हैं ये भी एक पुराना ही गाना है, ऐ मेरे जिंदगी तू प्यार का सपना फिल्म के नाम है। नेकति होंद नेक ने शस्तक का लता जी इस गाना को गाया है। इस फिल्म में काम किया है विश्वाजीत और मालहा सिन्हा ने दोस्तों, और को अशोक कुमार भी इसमें काम किया है, जॉनी भी काम किया है ना, हम जॉनी वॉल्कर दोस्तों, हेलेन काम किया है, और इसमें कितने लोग काम किया है, आओ मिलके सुना जाए ये कौन सा गाना है दोस्तों।

और खो गया जाने कहाँ जो है, ये एक पुराना गाना है दोस्तों, आओ मिलकर और सुना जाए, इसमें क्या है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों।

और वो बड़ी अरमान से लिखा है बलम तेरी कसम फिल्म मल्हार का ये गाना नेखतिन एन फैफ्तक का जिसको जिस फिल्म में लता जी और मुकेश जी गाया है और ये गाना दो और ये गाना जो अब हम चलाने जाते हैं भैया ये गाना जो है बहुत पुराना गाना है गीता दत्त शैलेंद्र का और इसमें हेमंत कुमार ने भी इस गाना को गाया है। दादा हेमंत कुमार ने मुझको तुम जो मिले तब वो क्या हुआ जहां भी मिल गए।

मिली जहां मिल गई, दादा हेमंत कुमार का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है मालहा सिन्हा ने गीता दत्त के साथ दोस्तों। और ये गाना है तुम तो प्यार हो सजना, और ये फिल्म है भाई शहरा का फिल्म है, और शहरा का फिल्म में क्या कहते आओ मिलके और

तुम तो प्यार हो सजनी। और लता और मोहम्मद रफी जी ये गाना आपको सुनाए, फिल्म शहरा का। ये फिल्म लिखी थी इंद्रिय से अस्तक का, और ये नया गाना जो नहीं है पुराना गाना लिखी थी निखने से अस्तक का है। और मुकेश जी इस गाना को गाया है फिल्म विश्वास का ये गाना। और मिलके सुना जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों।

और दोस्तों चांद की दीवार न तोड़ो और प्यार भरा दिल तोड़ दिया फिल्म विश्वास का ये गाना निहत होने निहन शस्तक का। और दोस्तों ये भी एक पुराना गाना हम चलाते हैं फिल्म विजयंती माला राजेंद्र कुमार का ये फिल्म है साथी का ये गाना और ये हम यहाँ से रेडियो फाहुन के माध्यम से चलाते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों और आओ मिलकर सुना जाए कि ये क्या गाते हैं।

मेरा प्यार भी तू है और ये बहार भी तू है, फिल्म साथी का ये गाना हमने निकाला है और जिसमें काम किया है विजयंती माला और राजेंद्र ने दोस्तों। और ये गाना है मोहम्मद रफी जी, परमाशी मोहम्मद रफी जी इस गाना को गाया है लक्ष्मीकंद के प्यारे, लक्ष्मीकंद प्यारे लाल के साथ पे। और ये गाना है फिल्म दोस्ती का और दोस्ती के गाना उसने सुनना चाहते हैं तो यहां से हम चला देते हैं और यहां से मेरे दोस्ती मेरे

और दोस्तों मेरी दोस्ती और मेरा प्यार, और इस गाना को मांग किया है और वो है सुरेश हरि प्रसाद भैया है नकन, बर्तन नर्तन धोई के भैया एकदम तैयार है। और बोले जॉनी ये गाना है फिल्म नूर जहां का, ये गाना है आओ मिलकर और हम सब और सुना जाए।

कर बदल जाने वाली फिल्म महबूब ने हंटिंग टू एंसेस्टर नूरजहां इस गाना को गाया है दोस्तों, और ये एक बहुत पुराना गाना है जो आप लोग को हमने सुना दिया है। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों मत भूल जाना, रेडियो फाहून पूरा विश्व में आप सुन सकते हैं दोस्तों, और आप जरूर डाउनलोड कीजिए वेब जो है हमारा रेडियो फाहून का, और देहा बी प्लस पे हम पूरा हॉलैंड में सुनाई देता है, और अपनी गाड़ी में एथर पे AM 15.66 तक पे हमारा प्रोग्राम आप लोग सुन सकते हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और जितना भी दोस्तों है, परिवार है, दुकानदारों है, बदरइफो है, आप सबको बता देना है कि रिक्लाम यहाँ पर रेडियो फाहून में बहुत सस्ते में मिल जाते हैं हमारे दोस्त। और दोस्तों प्यार भरी मोहब्बत भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग से माच आप लोग को और सेवा करेंगे दोस्तों। पहले हम चलते हैं कि पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा घूंटा है, पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा है, वो अपना हो ना हो दिल पर राज हमेशा उसकी ही रहता है। तो ये बात है दोस्तों, और हम तुरंत चलते हैं। और आपकी आ जाने से क्या होता है दोस्तों, और मोहम्मद अजीज आपको क्या सुनाएगा, साधना संगम सरगम है इसमें, और फिल्म के नाम है गुत्थे गर्स, खुद गर्स दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

और आम किया जाने से हमारा भी यहाँ पर मन बहुत चाहते हैं दोस्तों, और हम इस प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और कहते हैं सिखवा करने से गए थे और इबादत से हो गई, सिखवा करने गए थे और इबादत से हो गई, तुझे भूलने की जिद थी मगर तेरी आदत से हो गई। और दोस्तों आज हम आप लोग को और तक सैफ तक नेह तक का कुछ गाना सुनाएंगे दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए उदित नारायण एंड अलका याग्निक।

0: आई मेरे, और क्या क्या आप लोग सुनते हैं अलका और उदित नारायण का ये सॉन्ग है दोस्तों। और कहते हैं कि देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम में, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। नोखमाल्स नोखीर बेस्टल इस्तरात, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। दोस्तों तो आज आप लोग को हम कुछ शायर और शायरी की और मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग्स आप लोग को लिए हम चलाएंगे। और एक और हो जाए, मरे तो लाखों होंगे तुझ पर, मरते तो लाखों होंगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ। दोस्तों और चला जाए और ये गाना कोर कि पूछो जरा पूछो।
1: मुझे

ये दिल लगाने की सजा है। दोस्तों राजा हिंदुस्तानी 1966 भैया नहीं खनती ससन नहीं खन तक ये गाना है। और पूछो जरा पूछो अलका और कुमार शानू का, आज हम आप लोग को कुछ गीत और सुनाएंगे हमारे प्यारे दोस्तों और मोहब्बत भरी सॉन्ग समाज आप लोग को और सुनाते ही रहेंगे। हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर, हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर तेरे ही शिकायत करनी है तुझसे। और दोस्तों प्यार भरी और हम आज आप लोग को सॉन्ग सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और शायरी के और कुछ शायर के बातचीत भी, कुछ शायरी भी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और कहते हैं कि यहाँ पर अलका फीना गई है दोस्तों और उदित नारायण।

और दोस्तों, आप जहां भी हो, चाहे जौन देश में हो, हमारा प्यार आपके पास पहुंचे। और वो कहते हैं, वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी। समझ गया दोस्तों, एक कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाऊंगी। जवाब मैं क्या दूं दोस्तों, जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ गए ना हमारे प्यारे दोस्तों, कि ये कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी, जवाब मैं क्या दूं जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे प्यारे दोस्तों, ये बात ही कि कहते हैं कि अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार की लंबी अनजाने हो गए हैं, जहां पर फूल खिलते हैं कभी आज वहीं पर वीरान हो गए हैं दोस्तों। और ये सब बात कब होता है, जब प्यार में टकरार होता है। तो वो कहते हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए, प्यार के लम्बे अनजाने हो गए, जहां पर फूल खिलते थे कभी आज वहीं पर वीरान हो गए हैं दोस्तों। और हम चलते हैं एक गीत की ओर। आ जाना और फिल्म के नाम है कूली नंबर 1। भैया मिलकर सुना जाए।

दोस्तों अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और कुछ शायरी और शायरी हमारा आप लोग को लिए और हम कुछ बना कर लाए हैं कि कहते हैं मोहब्बत का एहसास हमारे दोस्तों हमारे चाहने वाले हमारे प्यारे प्यारे हमारे लवली लवली लोग और कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। समझ गए ना दोस्तों कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों ये तो बात भी होता है ना प्यार में कभी कभी, और प्यार में ये भी होता है दोस्तों कि रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्में, रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्में, जब तुम छोड़ कर जाते तो हम मर जाते। और हम चलते हैं और एक प्यार भरी गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यारे दोस्तों, हम आप लोग को प्यार भरी गाना चलाएंगे और आगे का प्रोग्राम हम बढ़ाते हैं फॉर ओनली द लवर्स के लिए। इस गाना को और शायरी हम यहां से चलाते हैं, ओनली लवर्स दोस्तों। और हम यह कहते हैं कि होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, उन्हें देखकर फिर से होश खो गए तो मैं क्या करूं दोस्तों। कि होशे हालात में कबूल तो कर लिया मैंने, उनके देखकर फिर होश खो गए तो क्या करूं हमारे दोस्तों। मुझे नहीं मालूम है प्यारे लोगों, मुझे नहीं मालूम है वो पहली बार कब अच्छा लगा, मुझे मालूम नहीं है कि पहली बार वो मुझे कब अच्छा लगा, मगर उसके बाद कभी बुरा भी नहीं लगा हमारे दोस्तों। और हम चलते हैं और एक गीत की ओर, कहते हैं मुझे जीने नहीं देते हैं याद तेरे।

और मुझे जीने नहीं देती। और ये याद तेरी दोस्तों, और आज हम आप लोग को श्री फॉर द लवर्स के लिए कुछ शायरी यहाँ पर हम और आपको सुनाते हैं कि कहते हैं कि प्यार वो नहीं, प्यार वो नहीं हमारे प्यारे दोस्तों, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। यानी से प्यार वो नहीं है, प्यार वो नहीं है जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार सिर्फ वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। फॉर द लवर्स। और दूसरा है मुस्कुराते हैं लब, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, बस एक आपके कमी है दोस्तों, आपकी कमी है। और सुना जाए अब क्या है,

दीवाना और मैं तेरा दीवाना। दोस्तों और यहाँ से कुछ प्यार भरी शायरी आप सबके लिए हम यहाँ से चलाते हैं। कभी कभी लोग जो है वो कहते हैं कि वो प्यार करते हैं, लेकिन उसका उसका एहसास उसको नहीं होता है कि अब क्या होगा और आगे को क्या होता है। तो यहाँ से हम बताते हैं कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का, डर है इस बात का कि तुम्हें कोई कोई बात गलत ना लग जाए। कभी कभी होता है दोस्तों कि बात करने तो चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कहीं हमारा बात इसको कुछ गलत ना लग जाए, तो वो बात करने में घबराते हैं। कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का कि तुम्हें कोई बात गलत ना लग जाए। और दूसरा है दोस्तों, हम इश्क के वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने चाहे तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों जब किसी से इतना प्यार हो जाते हैं तो जब किसी और आपको देखते हैं तो और या आप किसी को देखते हैं तो अपने आप को आपको फूल करने लगते हैं कि हम इश्क में वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों हम चलते हैं एक प्यार भरी गीत की ओर।

दोस्तों प्यार की प्यार भरी सॉन्ग आज हम आप लोग को और सुनाएंगे, कुछ शायरी भी आप लोग को हम आज सुनाएंगे और लवली लवली सॉन्ग फन यारन 90 tot en met en vanaf 80 90 95 के प्रोग्राम आज हम आप लोग को सुनाएंगे। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और मोहब्बत भरी प्यार भरी और दिल के धड़कन की और यानी कि बातें शायरी सुनाना है हमारा काम। और बात ये है दोस्तों कि इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज थे, जब तुम मिले तब इन लफ्जों को मैंने मिले। तो प्यार भरी शायरी आज हम आप लोग को सुनाएंगे। हम जाते हैं हम तुमको निगाहों में, हम तुमको निगाहों में गर्व। और इस गीत को इस फिल्म में काम किया है और यानी कि सलमान खान काम किया है दोस्तों। आओ मिलकर सुना जाए और ये क्या है, हमारा प्रोग्राम का नाम है मोहब्बत भरी, मोहब्बत भरी प्यार भरी पैगाम।

को निगाहों में। और क्या क्या होता सुन लो, आप लोगों ने तो खुद सुना है हमारे दोस्तों। और कहते हैं कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है। हमारी बात सुनो दोस्तों, कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा कर देखा है, दिल को नजर को रुला कर देखा है। तू नहीं तो कुछ भी नहीं तेरी कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम। मैंने खुद कुछ पल तुझे भुला कर देखा है। और कहते हैं इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून। इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून। तुम रखो कदम जहां खुदा में, तुम रखो कदम जहां खुदा करे, मैं वही जमीन बन जाऊं। तो हम जाते हैं दोस्तों, और एक प्यार भरी गीत तुम्हारी नजरों में हमने देखा है। कल की आवाज नहीं का ये फिल्म है, और रोहित बच्चिया और प्रतिभा सिन्हा का ये गीत है। आओ मिलकर सुना जाए।